सुप्रभात। FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

सबसे पहले सुनिए चिंतन। आज का चिंतन, जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को पवित्र रखता है उसके जीवन में शांति और आनंद स्वयं ही प्रस्फुटित हो उठते हैं। ये था आज का चिंतन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भारत का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का भाग 266। रामचरितमानस गान के अंतर्गत आप सुनेंगे किष्किंधा कांड। छः बजकर 45 मिनट पर और पुनः शाम को 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, कलाकार पंडित सी आर व्यास, इसका भाग 5 प्रसारित किया जाएगा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूली बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। वंदे मा

अलंकार ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा हेलो फरमाइश। सुबह 10 बजे संवादक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता या राघवेंद्र नेगी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली, संवादक सोनाली पाठक, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी है मिस मैच, लेखिका डॉक्टर जया आनंद, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पाटेकर की बातचीत का भाग 5 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा कहानी, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बूढ़ी काकी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं हरीश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। आपके लिए ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर रात को आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री मुमताज पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, आलेख एवं स्वर पूनम त्रिपाठी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये था आज का झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान किष्किंधा कांड का भाग 266।

बल तथा रूप के पुंज श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में वन में भटकते देख सुग्रीव को एक अव्यक्त भय हुआ। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलकर इस प्रकार वन में भटकने का कारण पूछने के लिए भेजा। श्री राम ने ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को अपना परिचय देकर जानकी हरण की बात कही और फिर प्रश्नकर्ता का परिचय पूछा। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज तक आप इस श्रृंखला की चार कड़ियां सुन चुके हैं। आज आप सुनेंगे पांचवी और अंतिम कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सीआर व्यास।
1: नमस्कार, अब आज हम राग पूर्वी के बारे में बात करेंगे। एक पहेली में बंदिश पेश कर रहा हूं जिसमें पूर्वी ही पूर्वी है।

राग पूर्वी, ये तो बहुत ही पुराना राग है और फादर राग है, थाट राग है। उसमें से बहुत सारे राग आते हैं, जैसे वसंत है, परज है। ये राग इसमें ये ही ताट से निकले हैं। तो पूर्वी और पुर्याधनाश्री, एक पुर्याधनाश्री की एक बंदिश जो यही सुर में है, वो आप, मैं गा के बताता हूँ, आप ध्यान के सुनिए।

और पुरिया धनाश्री में जो धनाश्री अंग है, धनाश्री अंग में पंचम बहुत ही प्रोमिनेंट रहता है। इसके लिए बंदिश की शुरुआत पंचम से ही हुई है।

क्रियाधनाश्री पूर्वी में कैसा फर्क होता है, इसमें पंचम प्रधान है, उसमें गंधार निषाद प्रधान पूर्वी में, तो यही बात है कि राग के बारे में जो बंदिश के द्वारे जो हम राग प्रस्तुत करते हैं वही अच्छी बात है। बंदिश को बहुत ही संभालना चाहिए और जितने बंदिशें एक राग में आपको गा सकते हैं उतना ही वो राग अच्छे आप गाएंगे। यही मेरा आपको संदेश है कि हर एक राग में अनेक बंदिश आप सीखने का कोशिश कीजिए और ये इसको राग प्रस्तुत करने में आपको सुविधा होगी और अच्छे तरह से आप राग प्रस्तुत करेंगे। यही संगीत की जो खासियत है, बहुत सारे लोग कहते कि वही शास्त्रीय संगीत में हमको कोई रुचि नहीं है। रुचि नहीं है क्योंकि कलाकार लोगों ने ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो राग पेश कर रहे हैं वो ठीक तरह से पेश कर रहे हैं या नहीं, इसको सोचना चाहिए। और जहाँ तक आपको हर एक राग में बंदिशी याद नहीं है तो आप राग अच्छे तरह से पेश नहीं कर सकेंगे। ये मेरा आपको संदेश है। अब मैं पूर्वी के बारे में आपको बताया कि इसमें कई सारे राग आते हैं, जैसे परज है, बसंत है, ललित है, तो मैं आपको एक परज की बंदिश सुनाता हूँ। और ये क्यों है पूर्वी में, क्यों है पूर्वी में जो आरोह हो रहे, नीरे ग मदनी सारे नी दा बा मा पा गा मा गा, ये जो संगति है वो संगति परज में आती है, वो मैं बंदिश के द्वारे आपको बताता हूँ।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा इस श्रृंखला की पांचवीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुत करता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। आपके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ चल दिया बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।
0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
6: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि। आज हम स्मरण कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अमर स्वर सम्राट मोहम्मद रफी को, जिनकी मधुर आवाज ने संगीत को अमरता प्रदान की। रफी साहब ने प्रेम, भक्ति, देशभक्ति, गजल, कव्वाली और शास्त्रीय संगीत हर विधा में अपनी अनुपम गायकी से श्रोताओं के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। आए ना बालम, आइए ये पहला गीत इस कार्यक्रम का आपको सुनवा रहे हैं शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

ये गीत अभी आपने सुना शबाब फिल्म से। हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को। भारतीय सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से एक थे मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज़, व्यापक गायकी और हर शैली में ढल जाने की अद्भुत कला से संगीत जगत पर राज किया।

0: बूट पॉलिश। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी। उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था, तो गडरण भवन सू आयो विनायक करो ये नसीती दरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले,
0: ओले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ऐसी आत्मीयता थी कि हर गीत एक जीवंत अनुभूति बन जाता था। उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए उन्हें कई बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1948 में महात्मा गांधी पर गाए उनके देशभक्ति गीत के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें चांदी का पदक प्रदान करके सम्मानित किया था। फिलहाल आपको सुनवाते हैं यह अगला गीत। चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर के बोल हैं, रोशन का संगीत। साहिर लुधियानवी की रचना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। उन्हें सिनेमा जगत के सबसे लोकप्रिय फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला। 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहारों फूल बरसाओ, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, क्या हुआ तेरा वादा। इन गीतों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए नामांकित किया गया था। आज हम नमन करते हैं सुरों के उस अमर साधक को, जिनकी आवाज समय की सीमाओं से परे आज भी हर दिल में गूंजती है। सुनवा रहे हैं आपको अगला गीत फागुन फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी ने इस गीत को लिखा है, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया है।

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आवारा फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी और साथियों के सुरों में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला रिकॉर्ड किया गया गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच का था, जो कि 1944 में रिलीज़ हुई थी, और ये एक युगल गीत था जिसे उन्होंने जीनत बेगम के साथ में रिकॉर्ड किया था। और हिंदी सिनेमा में पदार्पण उनका हुआ था फिल्म गांव की गोरी, इस फिल्म से 1945 में हिंदी पार्श्व गायन की शुरुआत उन्होंने की थी। अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, लाल रुख, इस फिल्म का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कैफी आज़मी की रचना है, खयाम का संगीत।

0: श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब अपने मूड के हिसाब से, गीत के मूड के हिसाब से और संगीत की शैलियों और अभिनेताओं के अनुसार अपनी आवाज़ बदलने में पूरी तरह से पारंगत थे। यही तो उनकी खासियत थी। 31 जुलाई उनकी पुण्यतिथि पर हम इस महान स्वर साधक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: थोड़ी ही देर में हम लेकर आते हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: बहू जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारानिया। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। आपको पहला गीत इस कार्यक्रम का सुनवाने जा रहे हैं फिल्म वारिस से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं।

0: जा।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
4: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को। आज है उनकी पुण्यतिथि और कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में हमने आपको उन्हीं के गाए गीत सुनाए हैं और हम है राही प्यार के भी उन्हीं के गीतों से सजा हुआ है। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यार का मौसम, इस फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन की बनाई तर्ज़।

यादों की बारात इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में, युगल स्वरों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देवी बर्मन का संगीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब को, आज है उनकी पुण्यतिथि। उनका गाया हुआ गीत बेहद मशहूर क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों मिले थे। फिलहाल आपको सुनवा रहे हैं कारवां फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है। मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आर डी बर्मन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
6: सखी सहेली।
7: तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति आओ प्यार करें इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में राजेंद्र कृष्ण के बोल उषा खन्ना का संगीत।

आओ प्यार करें इस फिल्म का गीत। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न हो रहा है। आज हमने याद किया पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी को, आज है उनकी पुण्यतिथि।

0: यह आकाशवाणी की मनोरंजन सेवा विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
4: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
3: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
3: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
7: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
3: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान

0: करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
2: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट।

0: जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार, लोक सत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र

0: जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ये परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
1: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ेराम हेडगेवार थे।
0: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
1: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था।

0: लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉइस राय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया, इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी।

0: पर उससे भी बढ़कर ये प्रभाव था इसी आंदोलन के समय हथियार के रूप में उपयोग किए गए वंदे मातरम इन शब्दों का। इस आंदोलन के बहाने वंदे मातरम इन दो ही शब्दों में मौजूद आग की तपिश ब्रिटिश राज सिंहासन तक पहुंच गई थी। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलते समय वंदे मातरम पर लगाई गई पाबंदी और प्रतिबंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था और इन शब्दों के कारण आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
2: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आपकी मंगल कामनाओं के साथ शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को, नई सुबह की नई किरणों के साथ आपका स्वागत करते हुए। उठिए, मुस्कुराइए और आज के दिन की शुरुआत कीजिए पूरे जोश, पूरे जुनून और भरपूर ऊर्जा के साथ। तो चलिए कुछ कदम वॉक के, कुछ पल योग के, थोड़ी सी एक्सरसाइज और ढेर सारी सकारात्मक सोच के नाम करते हैं और सुनवाते हैं आपको पहला गीत, जिसकी धुन आपके कदमों पे कदमों को रखने पर और दिल को जोश से भर देने पर मजबूर कर देगी।

कार्यक्रम चित्रलोक की शुरुआत हमने इस गीत के साथ की, जिसे हमने लिया था फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। सुनिधि चौहान और साथी के स्वरों में ये गीत था। जयदीप साहनी ने इस गीत को लिखा था, सलीम सुलेमान का संगीत था। आजा नचले इस फिल्म का गीत। सलीम सुलेमान का ही संगीत है, जयदीप साहनी ने इस गीत के बोल लिखे हैं।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर और मीट ब्रदर्स की आवाजों में। कुमार का लिखा गीत, मीट ब्रदर्स का ही संगीत है, फिल्म का नाम है बागी।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आज है साहित्यकार प्रेमचंद का जन्मदिन। साहित्य के उस महान साहित्यकार का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी कलम से आम आदमी के सुख दुख को अमर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की, जिनका जन्म 31 जुलाई को हुआ था। धनपत राय के नाम से जन्मे प्रेमचंद जी ने गोदान, गबन और निर्मला जैसे कालजयी उपन्यास और ईदगाह जैसी मर्मस्पर्शी कहानियाँ दी। यथार्थवाद और समाज सुधार को अपनी रचनाओं का आधार बनाने वाले इस महान कथा शिल्पी को उनकी जयंती पर आज हमारा शत शत नमन। लापता लेडीज फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, राम संपत की बनाई धुन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले,
2: ओले, ओले। मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और कमाल खान की आवाजों में समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
0: अरे सुनो,
5: आपने सुना चित्रडू कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को पेपर लीक रोकने के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन आज से जयपुर में, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC पर अब तक करीब 68,000 सुझाव प्राप्त हुए और राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से पहचान पत्र साथ रखने और निर्धारित रास्तों का उपयोग करने की अपील की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी, जबकि लोकसभा से विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत के नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
7: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।
6: विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। श्री देवनानी ने कहा कि सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी आवश्यक प्रशासनिक और व्यवस्थागत तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुरूप संचालित की जाएगी। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे। इसका आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा

0: प्राधिकरण, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और निवारण मीडिएटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन विषय पर होने वाले इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान मीडिएशन, कानून के शासन और न्याय तक आसान पहुंच से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही वाणिज्यिक, पारिवारिक, पर्यावरण और सीमा पार विवादों के समाधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU का विशेष दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि ये समारोह जयपुर स्थित लोक भवन में होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सेवी प्रोफेसर अच्युत सामंत को PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा है कि राजस्थानी केवल भाषा नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और पहचान है। वे कल जयपुर में आयोजित राजस्थान गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने बताया कि राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने संस्कृति और भाषा के संरक्षण में सभी से भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को राजस्थान गौरव सम्मान से नवाजा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC के संबंध में अब तक करीब 68,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई गृह विभाग की बैठक में ये जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को UCC के लिए अधिक से अधिक लोगों की राय और सुझाव प्राप्त करने के लिए WhatsApp, QR कोड और SMS सहित सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला और विभागीय अधिकारियों से जन जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। मुख्य सचिव ने राज्यस्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक भी ली। उन्होंने हर जिले में ड्रग्स से जुड़े 10 प्रमुख मामलों की पहचान करने और 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू के साथ कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि बड़े विमानों को संभालने में सक्षम 3.2 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ कोटा हवाई अड्डा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश का द्वार बनेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्राओं के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि 11 अगस्त तक चलने वाली यात्राओं के दौरान कांवड़ियों से वैध पहचान पत्र साथ रखने को कहा गया है। साथ ही निर्धारित रास्तों का ही उपयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। साथ ही हथियार, नशीले पदार्थ और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज वाले DJ पर रोक रहेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का पैदल और वाहनों से आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधिकारियों को सभी संवेदनशील मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने और सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की नेहा सोलंकी को ग्रासरूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 से सम्मानित किया जाएगा। आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने सेरेब्रल पाल्सी तथा अन्य न्यूरो मोटर समस्याओं से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी कुर्सी विकसित करने के लिए नेहा का चयन किया है। नेहा ने बताया कि ये विशेष कुर्सी बच्चों को सुरक्षित और सही मुद्रा में बैठने में मदद करती है।
1: हमने एक कुर्सी बनाई है जिसका नाम बड़ी चेयर है। ये कुर्सी स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए काम आती है, जो बैठ नहीं सकते, जिसमें सर्वे पार्श्व और दूसरे न्यूरो मसल डिस

0: डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए काम आएगी। ये 4 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए काम आने वाली कुर्सी है। इसमें बच्चा स्कूल जा सकता है, थेरेपी सेंटर में स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकता है, और सबसे ज्यादा ये कुर्सी बच्चों को घर में काम आ सकती है जहां वो सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं। उनके माँ बाप उनको कुर्सी पे छोड़ के अपने दूसरे घर के काम कर सकते हैं।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऊधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को मौत के घाट उतार दिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें नमन करते हुए लिखा कि सरदार ऊधम सिंह का संकल्प, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण इतिहास में सदैव अमर रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को पेपर लीक रोकने के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन आज से जयपुर में। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC पर अब तक करीब 68,000 सुझाव प्राप्त हुए। और राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से पहचान पत्र साथ रखने और निर्धारित रास्तों का उपयोग करने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए FM रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम।

0: lovely morning chit chat. Only on 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khas hai, kuch to baat hai.
1: Well, good morning, Jafarites. Ki hal tada? Changa? Well, weekend ki khushi hai, toh haal toh aapka changa hona hi chahiye. Toh 31 July hai aaj, mahine ka aakhri din hai, aur August na, bas start hone hi wala hai kal se. Toh mahine dar mahine, saal dar saal, din kaise bhi jaate hai, pata bhi nahi chalta. Right. Par jo humare haath mein hai na, dosto, wo hai jeena aur khulkar jeena, har din ko, har pal ko. Toh Rashmi hai aapke saath on Radio Pink City 100.3 FM, and show shuru ho chuka hai. Lovely morning chit chat. Toh weekend wali vibe hai, janabin mohatarma. तो सोचना कैसा, चलिए करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत इस ऑसम से ट्रैक के साथ. सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है. और अगला गाना जो है अलका याग्निक की आवाज़ में सुबह का पहला गाना पहुंच रहा है सीधे आपके रेडियो सेट्स पर. एंड आप मिलेनियल हैं तो झूमेंगे ज़रूर.

0: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
0: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज।

मोहित चौहान की आवाज़ मनोज मुंतशिर साहब के लिखे बोल एक खूबसूरत एक प्यारा सा गाना आपने सुना फ्रॉम द मूवी एक पहेली लीला। वेल मैं हूँ रश्मि आपके साथ ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम एंड शो चल रहा है लवली मॉर्निंग चिट चैट। सुबह के पूरे पूरे 9:23 और 53 सेकेंड हो चुके हैं और बात करें अगर मौसम की, क्योंकि मौसम जो है ना आजकल हमें, आज तो बड़ा प्यारा सा मौसम है वैसे आपको बता दूं, तो अगर मौसम की बात करें तो मौसम का नेचर है यार बदलना, कभी धूप कभी बादल कभी हल्की बारिश और ये सिलसिला ना बस चलता ही रहता है। और अब तो जुलाई भी एंड पर है, मतलब अगस्त ना कल दस्तक दे ही रहा है हमारे दरवाजे पे। तो अगस्त में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बारिश, ठंडी हवाओं के झोंके, कभी कभी वो कोजी सा मौसम जो चाय को और ज़्यादा मज़ेदार बना दे, राइट? तो मानसून अपने पूरे रंग में होगा, कहीं रिमझिम होगी कहीं झमाझम होगी और हम वो सारे गाने सुनेंगे, आंखों से तूने ये क्या कह दिया और भी बारिश वाले बहुत सारे गाने। तो तैयार हो जाइए इस बदलते मौसम के साथ अपनी वाइब को मैच करने के लिए। और अब मैं आपको देने वाली हूँ आज के पूरे दिन का टेम्परेचर अपडेट कि कब कितनी गर्मी होगी और कब मिलेगी राहत। तो अभी जो टेम्परेचर है दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर आज के दिन का हाल आपको बताऊँ तो 12 बजे तक टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, वहीं 1 से 4 बजे के बीच ये 33 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा और 6 बजे तक शाम फिर से 32 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो दोस्तों ये था आज के दिन का हाल और फिलहाल वक्त है आगे बढ़ने का। और जब हम आगे बढ़ ही रहे हैं तो उदित नारायण की प्यारी सी आवाज़ पहुंच रही है सीधे आपके रेडियो सेट्स पर और गाना है फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जावेद अख्तर साहब के बोल और एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा गाना जो आपको इश्क की दुनिया में, प्यार की दुनिया में ले जाएगा। एंजॉय दैट ट्रैक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मुस्कुराहटों की मीठी खुशबू ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
2: जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ए खुशी।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

रंधावा और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में सुना आपने ये प्यारा सा ट्रैक। और क्या आवाज़, क्या हुनर। कहते हैं कि ईश्वर जब हुनर देता है ना तो रज के देता है, फिर सोचता नहीं है। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि आपको जो हुनर दिया गया है वो आपको तोहफा नहीं मिला है, आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने हुनर को बखूबी पहचाना, उस पर काम किया और हमें साहित्य की ऐसी सुनहरी सौगात दी कि हम आज तक थैंकफुल हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है 31 जुलाई और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद जी का। उनकी माँ का नाम था आनंदी देवी और पिता थे मुंशी अजायब राय, जो कि लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय और ये एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे, समृद्ध परिवार था इनका। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने अपनी माँ को खो दिया। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ का व्यवहार जो था कभी इनके प्रति ठीक नहीं रहा। 15 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई और 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। इन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे। पहली पत्नी के साथ जब इनका मनमुटाव हुआ तो इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी शिवरानी देवी से की और वो एक बाल विधवा थी। और उस वक्त में बाल विधवा से शादी किया जाना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी। फादर की डेथ हुई और उसके बाद इनके हालात इतने बिगड़ गए कि इन्होंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया और उसी से वो अपना गुजारा करते थे। बाद में वो एज अ टीचर अपॉइंट हुए और यहाँ से उनके हालात जो हैं कुछ सुधरना शुरू हुए। दोस्तों ये कहा जाता है कि एकांत और अकेलापन जो होता है ना, उसमें इंसान अपने दिमाग की आवाज़ सुनता है, अपनी आवाज़ सुनता है। और यहीं मुंशी प्रेमचंद जी के साथ हुआ। बचपन में बहुत सारा वक्त जो था उनका अकेले बीतता था, उनके साथ कोई नहीं होता था। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया और यही दोस्ती जो है उन पूरे जीवन उनके बहुत काम आई। कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आती है ना, कुछ भी जब प्रोग्रेस हो रही होती है वो अकेली नहीं होती है। मुंशी प्रेमचंद जी का अकेला रहना और उस समाज को ऑब्जर्व करना, ये ही उन्होंने अपने शब्दों में ढाला। बात करें अगर उनकी कृतियों की तो कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, अलंकार, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, जाने कितने खूबसूरत उपन्यास हैं जो उन्होंने लिख दिए हैं। ये इनके उपन्यास और इनके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनके कुछ लाइन्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। एक लाइन तो मुझे याद आती है, उन्होंने कहा कि जो इंसान अकेले में किसी अपने प्रेम के लिए रोया ना हो उसका जीना व्यर्थ है। ऐसी कुछ लाइन उन्होंने बहुत खूबसूरत कही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया वो क्या लिखेंगे। और वाकई में पीड़ा से ही तो जन्म होता है कला का। 8 अक्टूबर 1936 में सिर्फ 56 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका लिटरेचर, उनका साहित्य आज भी हमें जीना सिखाता है, समाज को देखना सिखाता है। और शायद यही कारण है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को राष्ट्रीय लेखक दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के दिन हम याद करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इतना खूबसूरत साहित्य जो है हमें दिया। थैंक यू सो मच। Enjoy the track. ये गाना समय के बारे में बताता है और इसी के साथ ही ये गाना मैं डेडिकेट करती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी को।

0: से।
1: वो कौन सी प्यारी सी डोर है जो बांधे है आपको और हमको। आपका अपना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

एक सुबह के 9:48 बजकर 42 सेकंड हो चुके हैं, पूरे पूरे 43 सेकंड हो चुके हैं। रश्मि है आपके साथ ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम एंड शो चल रहा है लवली मॉर्निंग जेट चेयर। नमस्ते लंदन फिल्म से सुना आपने ये अमेजिंग सा ट्रैक रफ्ता रफ्ता। देखो देखो क्या हो गया, हम नहीं जानते क्या हो गया। तो वेल गाइज, बढ़ते हैं आगे। और आज का दिन जो है ना सिनेमा जगत में भी अहम है, या ये कहें कि नुकसान का दिन है तो गलत नहीं होगा। आज डेथ एनिवर्सरी है मोहम्मद रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब जिन्होंने एक से बढ़कर एक गाना हिंदुस्तानी सिनेमा को दिया, आज ही के दिन हिंदुस्तान ने उन्हें खो दिया। उनके गाने जो कि अपने आप में लेजेंडरी हैं, चाहे वो गुलाबी आंखों का करार हो या लिखे जो खत तुझे का सुकून, सब एक से बढ़कर एक गाने। बात करें अगर उनके लाइफ की तो 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में जन्मे रफ़ी साहब के पिता हाजी अली मोहम्मद और माता थी अल्लाह रखी बेगम। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव था और उन्होंने पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा सुरों की दुनिया की तरफ ध्यान देना ज़रूरी समझा। मोहम्मद रफ़ी का बचपन बेहद सादगी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन इसी के बीच जो है उनकी महानता की नींव रखी गई। कहते हैं कि उनके गांव में एक फ़कीर आता था, ये कहानी बहुत फेमस है कि उनके गांव में एक फ़कीर आता था जो गाने गाता था, एंड रफ़ी साहब रोज़ उस फ़कीर का गाना सुनते एंड कॉपी करते। और ये सिलसिला जो है बड़े लंबे वक्त तक चलता रहा। रफ़ी साहब रोज़ उस फ़कीर को सुनते, उसका पीछा करते, और बस फिर क्या था, ये शुरुआत थी उनके संगीत की तालीम की। रफ़ी साहब के फादर को सिंगिंग जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनको बिल्कुल सख्त नफरत थी कि कोई सिंगिंग करे या कोई गाए। इसीलिए रफ़ी साहब अपना ज़्यादातर वक्त जो है अपने भाई के साथ बिताते थे जिनकी नाई की दुकान थी, क्योंकि वहाँ जो है ना उनको खुल कर गाने का पूरा पूरा मौका मिलता था। रफ़ी साहब की अगर गुरुओं की बात करें तो रफ़ी साहब ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब, पंडित जीवन लाल मट्टू जी और फिरोज़ निज़ामी जी से क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली। और उनका जो पहला शो था वो सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने किया, वो भी दी ग्रेट KL सहगल साहब के साथ। 1944 में वो बॉम्बे आए और उसके बाद उन्हें चांस मिला फिल्म गांव की गोरी के लिए गाना रिकॉर्ड करने का। रफ़ी साहब दो फिल्मों में भी नज़र आए, लेकिन उन्हें सिंगिंग से इतना लगाव था और मेकअप से इतनी ज़्यादा नफरत कि उन्होंने अपने गायकी की तरफ ही जो है अपना ध्यान रखा, अपना रुझान रखा। बात करें अगर उनके गानों के बारे में तो हम सब उनके गानों के तो दीवाने हैं ही। उनके रोमांटिक गानों में शामिल है बहारों फूल बरसाओ, लिखे जो खत तुझे, ये गाना तो सबने सुना है, ये चांद सा रोशन चेहरा और इसके साथ अभी ना जाओ छोड़कर। इसी के साथ बात करें अगर उनके सैड सॉन्ग्स की तो क्या हुआ तेरा वादा, इस गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। दिन ढल जाए ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और बहुत सारे गाने जो है ना उन्होंने हमें दिए। अवार्ड्स की बात करें तो 1967 में भारत सरकार ने इन्हें कला में इनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया, और 1977 में इन्हें नेशनल अवार्ड मिला फॉर द सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि आवाज़ का वो जादूगर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हर उस इंसान के दिल में धड़कती है जिसने कभी सच्ची मोहब्बत की है, जिसने कभी इश्क किया है। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम उन्हें मन से याद करते हैं, और अगले जो दो गाने हैं ना उन्हीं की आवाज़ में पहुँच रहे हैं सीधे आपके रेडियो सेट्स पर। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी कन्यादान, लिखे जो खत तुझे।

0: ये गाने सुनाई देते हैं आपको आपके अपने फेवरेट एफएम पर, जो है 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: वेल आई एम बैक एंड टाइम इन स्टूडियो, क्लॉक इज 10:02, पूरे 10:02 हो चुके हैं और वक्त हो चला है बात करने का गीतों के बारे में, उन शख्सियत के बारे में जिन्होंने हमें कुछ ऐसे गाने दिए जो बस हमारे साथ सफ़र करते हैं। रश्मि आपके साथ ऑन रेडियो बिंग सिटी 100.3 एफएम एंड शो का नाम है गीत मेरे मीत। वाकई में गाने जो होते हैं ना यार, वो हमारी मीत ही तो होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। और देखा जाए तो हर सिचुएशन के लिए हम लोगों के पास एक गाना होता है। हम हैप्पी हैं तो भी गाना है, सैड हैं तो भी गाना है, और कुछ सरप्राइजिंग है तो भी गाना है। गाने हमारे साथ सफ़र करते हैं और सफ़र में हम गानों को साथ लेकर चलते हैं। इट्स अ बिट ट्विस्ट ना। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कमाल पर्सनालिटी के बारे में जिनकी आवाज़ हमारे दिलों का सुकून है भाई, उनकी आवाज़ के कहने ही क्या। वो वर्सेटाइल हैं, जब भी गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो वक्त ना थम सा गया है, यहीं रुक गया है। वो म्यूज़िक को समझते हैं, जानते हैं, और उनकी ये समझ जब इमोशंस के साथ खुलकर हम तक पहुंचती है तो बस कहने ही क्या। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आर्ट के साथ ना आपने पूरे तरीके से क्राफ्ट को जोड़ दिया है और अब जो है ना फाइन होने के अलावा और कोई तरीका बचा नहीं है। कौन है वो शख्सियत, बात करेंगे उनके बारे में इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। और गाने जो है ना उन्हीं की आवाज़ में पहुँच रहे हैं सीधे आपके रेडियो सेट्स पर, आप इस आवाज़ को डेफिनेटली पहचान जाएंगे। Enjoy the track, it's a beautiful one.

0: ये हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से।
1: वो कौन सी प्यारी सी डोर है जो बांधे है आपको और हमको। आपका अपना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: ने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
4: हाय गाइस, आई एम बैक। मैं हूं आपकी अपनी आरजे रश्मि। आप सुन रही हैं रेडियो विंग सिटी 100.3 एफएम एंड शो चल रहा है गीत मेरे मीत। तो मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूं, वेल आवाज़ सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि एक ऐसी मैजिकल वॉइस है जो एक बार छू लेना तो जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, सोनू निगम। 30 जुलाई 1973, यानी कि कल ही इन्होंने अपना 52nd बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट किया है। तो 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद हरियाणा में जन्मे सोनू निगम एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता जो हैं आगम कुमार निगम एक स्टेज सिंगर थे और माँ शोभा निगम थी संगीत से जुड़ी हुई। यानी म्यूजिक जो है ना उन्हें बचपन से ही घर की आबो हवा में मिला था। सिर्फ 3 से 4 साल

की उम्र में सोनू ने अपने पापा के साथ स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब का फेमस सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा गाकर सबको हैरान कर दिया इतनी छोटी उम्र में। धीरे धीरे वो अपने पिता के साथ वेडिंग्स और लाइव शोज में परफॉर्म करने लगे और यहीं से उनकी सिंगिंग की जर्नी जो है ना उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी गई। दिल्ली में उनका बचपन बीता जहाँ पढ़ाई के साथ साथ वो म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत एक्टिव रहे। आगे चलकर उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी से ली जिन्होंने उनकी आवाज़ को और भी ज़्यादा रिफाइन और सोलफुल बना दिया। बात करेंगे उनके बारे में और भी क्योंकि यार उनके बारे में बात करने को इतना कुछ है और जब उनको याद करते हैं ना तो उनके गानों के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। 32 साल का करियर उसमें 6000 से ज़्यादा गाने ये हैं सोनू निगम। नाउ एंजॉय द ट्रैक इन हिज वॉइस।

0: बहू
1: जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ।

0: और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: एक नई खुशी। जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेल, सुबह के 10:30:47 हो चुके हैं। पूरे रश्मि है आपके साथ ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 31 जुलाई है आज। कल से अगस्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और देखते देखते ये साल भी ना कैसे गुजर जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। खैर, वक्त का काम है चलना, हमारा काम है जीना वक्त को। शो चल रहा है गीत मेरे मीत और बात कर रहे हैं हम मिस्टर सोनू निगम के बारे में। कल उन्होंने अपना 52nd बर्थडे सेलिब्रेट किया है एंड ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने जो हैं हमें दिए हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 32 साल के करियर में 6000 से ज़्यादा गाने जो हैं वो हमें दे चुके हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बात करें अगर उनकी लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो 1990 के दशक में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। ये वो वक्त था दोस्तों जब कुमार सानू और उदित नारायण जो है ना इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। ईयर वॉज 1993, एक फिल्म रिलीज हुई आजा मेरी जान। सोनू निगम सर ने अपने करियर की शुरुआत की उस फिल्म से और गाना था ओ आसमान वाले। ये गाना सोनू निगम ने गाया। कहा जाता है कि 1990 में भी एक फिल्म आई थी जानम, उस फिल्म में उन्होंने गाना गाया लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। उन्होंने एक सीरियल तलाश के लिए भी एक गाने में अपनी आवाज़ दी, फिल्म बेवफा सनम। उन्होंने बहुत ही कमाल का गाना गाया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और ये गाना बहुत फेमस हुआ। साल था 1997, फिल्म रिलीज हुई बॉर्डर और फिल्म का गाना संदेशे आते हैं गाया सोनू निगम ने, और ये गाना हम सब जानते हैं अपने आप में हिस्ट्री बन गया। और फिर आई फिल्म परदेस, जहां इस फिल्म में जहां शाहरुख के चार्म और महिमा चौधरी की मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया, वहीं फिल्म का गाना ये दिल दीवाना काफ़ी फेमस हुआ, जो कि सोनू सर की ही आवाज़ में था। तो बात करेंगे सोनू सर की लाइफ के बारे में और भी। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, उन्हीं की आवाज़ में ये ही दो गाने पहुँच रहे हैं सीधे आपके रेडियो सेट्स पर। पहला गाना है संदेशे आते हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर और अगला गाना आएगा फ्रॉम द मूवी परदेस ये दिल दीवाना। एन्जॉय द ट्रैक्स।

एक दिन आऊंगा। सोनू निगम और रूप कुमार की आवाज़ में सुना आपने ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी बॉर्डर, संदेशे आते हैं। और यार जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ ना, हमारे देश की आर्मी के लिए जो श्रद्धा जो प्यार उमड़ता है, और ये एक प्रेयर आई थिंक हम सबको हमेशा करनी चाहिए कि हमारा हर एक जवान, हमारी आर्मी हमेशा सुरक्षित रहे। वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमें उनके लिए उनकी शुक्रगुजारी जो है हमें हमेशा अदा करनी चाहिए। वेल बढ़ते हैं आगे और बात हो ही जाए जो है सोनू निगम के गानों के बारे में। तो पीक रोमांटिक एरा यानी कि 2001 से 2005 में उन्होंने हमें ये बहुत खूबसूरत गाने दिए, जैसे कि केथरी जी से सूरज हुआ मध्यम, केथरी जी से ही यू आर माय सोनिया, कल होना हो का टाइटल ट्रैक उन्होंने हमें दिया जो कि काफ़ी सुपर हिट रहा, मैं हूं ना का टाइटल सॉन्ग भी उन्होंने हमें दिया, और वीर ज़ारा फिल्म से दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, कितना ही खूबसूरत गाना जो है उन्होंने गाया। 2011 से 2015 के बीच की बात करें तो वो सोलफुल एंड अवार्ड विनिंग फेज जो है उनके लिए रहा। शुक्रन अल्लाह, कुर्बान फिल्म से उन्होंने ये गाना हमें दिया। अग्निपथ का ये गाना अपने आप में आइकॉनिक बन गया, अभी मुझ में कहीं। वहीं राज टू का सोनियों गाना जो है उन्होंने हमें दिया, और वेरियस लाइव एंड इंडी हिट्स जो हैं उन्होंने हमें दिए हैं। अगर मैं गानों की बात करती जाऊँ तो लिस्ट अपने आप में इतनी लंबी है, और हर गाने के बाद यही कहना पड़ेगा कि कमाल, बेमिसाल।

सोनू सर का एक और टैलेंट है जिसे हम सब जानते हैं, दैट इज मिमिक्री। वो मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। इसी के साथ आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, ही इज ऑलवेज हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ मैन। तो बात करेंगे उनके बारे में और भी, लेकिन फिल्म परदेश से ये वाला गाना पहुंच रहा है सीधे आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय द ट्रैक।

वेल, सुबह के 10:51 चंबा 42 सेकंड हो चुके हैं। रश्मि आपके साथ ऑन रेडियो विंग सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। तो दोस्तों, ये था सफर सुरों के बेताज बादशाह सोनू निगम सर का। और अगर आप उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो आप ये जानते होंगे कि वो कितने हम्बल इंसान हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि मेहनत करने का भी इंसान को मौका मिलना चाहिए। भाग्य एटलीस्ट आपको मेहनत करने का मौका तो दे। आप एक ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहाँ आपको कला सीखने का मौका मिलता है, अपना टैलेंट, अपने हुनर को निखारने का मौका मिलता है। तो ये वाकई में सही बात है कि अपने आप पर काम करने का मौका मिलना भी बड़ी बात है, भाग्य की बात है। एक मूवी है, उसका डायलॉग है। मेरा दोस्त कल परसों मुझे बता रहा था कि वो बहुत सारी मूवीज़ देखता है और एक डायलॉग है जो उसे बहुत पसंद है, दैट इज़ डेस्टिनी इज ऑल। हालांकि कर्म प्लेज अ बिग रोल, लेकिन जैसा कि सोनू सर ने कहा कि भाग्य आपको एटलीस्ट इतना मौका दे कि आप अपने आप पर काम कर पाएं। जब भी उनसे ये बात कही जाती है कि आप जिंदगी के इस मुकाम को कैसे देखते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैंने नहीं किया, ये सब ऊपर वाले की देन है, उन्होंने किया है। तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सोनू सर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड एंड ऑलवेज ब्लेस अस विद योर डिवाइन वॉइस। अगला गाना उन्हीं की आवाज़ में पहुंच रहा है सीधे आपके रेडियो सेट्स पर, जो कि जिंदगी की हकीकत को बयां करता है।

0: यूं तो आप हर रोज हमारी रेडियो पिंक सिटी की रहगुजर से गुजरते हैं, लेकिन आजकल आप एक खास रहगुजर से गुजर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा इस रहगुजर में अफसाने हैं, इस रहगुजर में शायरी है, इस रहगुजर में सुफियाना कलाम है। क्या कुछ नहीं है इस रहगुजर में, एक बार गुजर के तो देखिए जनाब। आप सुन रहे हैं FM रेडियो पिंक सिटी और हमारी खास पेशकश रह गुजर। आप सुन रहे हैं FM रेडियो पिंक सिटी और हमारी खास पेशकश रह गुजर।
1: रह गुजर एक रास्ता जिसे तय किया जाना है, जिसे पार करके मंजिल तक पहुंचना है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों के रास्ते जो हैं वो आसान हों, वैसे हों जैसे हम चाहते हैं, लेकिन चलना ही जिंदगी का नाम है। एक गाना है, उसके लाइंस हैं कि जाते हुए राही के साये से सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या। तो रास्ते तो तय करने ही पड़ते हैं, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम चलना है। और चलते हुए जब लगे कि हम थक गए हैं, कोई साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो कोशिश करना कि आप किसी का सहारा बन पाओ। हो सकता है जिस तरीके से आप सहारे का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई इस इंतज़ार में हो कि कोई उनका सहारा बने। और यही तो इस रह गुज़र की खूबसूरती है। अब शुरू हो चुका है वो शो जो ऐसे रास्तों पर लेकर चलता है, जो सुकून भी सिखाते हैं, दर्द भी सिखाते हैं, पीड़ा भी बताते हैं, लेकिन हर एहसास को शिद्दत से महसूस करने के बारे में बताते हैं। और इस रह गुज़र में हमारा साथ देंगी वो गज़ल्स जिनमें सुकून भी है, प्यार भी, शिद्दत भी और खूबसूरती भी। पहली गज़ल गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी की आवाज़ में पहुंच रही है सीधे आप तक। गज़ल का नाम है कोई फरियाद। इस गज़ल का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है कि एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफ़र, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफ़र, ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे। जाने ये कौन सा एहसास है जिसे शायर ने इतना रज के महसूस किया, इतना टूट के महसूस किया। वेल गज़ल सीधे आप तक।

यूं तो आप हर रोज हमारी रेडियो पिंक सिटी की रहगुजर से गुजरते हैं, लेकिन आजकल आप एक खास रहगुजर से गुजर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा इस रहगुजर में अफसाने हैं, इस रहगुजर में शायरी है, इस रहगुजर में सुफियाना कलाम है। क्या कुछ नहीं है इस रहगुजर में, एक बार गुजर के तो देखिए जनाब। आप सुन रहे हैं FM रेडियो पिंक सिटी और हमारी खास पेशकश रहगुजर।

बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आंखों ने बताया मई कशी क्या चीज़ है, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। वेल, निदा फाजली साहब ने यह गज़ल लिखी और इसे आवाज़ दी जगजीत सिंह जी ने। रास्ते पर चलते हुए भरोसा बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसा शख्स होना जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसे हम अपनी बात कह सकें, जिसे एहसास हो कि हम कब कमज़ोर हैं और कब मजबूत रह पाते हैं। भरोसे से मुझे याद आते हैं विशाल जानिब साहब, जिनकी गज़ल के बहुत ही खूबसूरत अशआर हैं कि तीर कितने पास से मारा गया, तीर कितने पास से मारा गया, एक राजा दास से मारा गया, तीर कितने पास से मारा गया, एक राजा दास से मारा गया, मौन धारण कर खड़े हैं अस्त्र शस्त्र, मौन धारण कर खड़े हैं अस्त्र शस्त्र, आदमी विश्वास से मारा गया, और मैं जो था एक नदी का देवता, कि मैं जो था एक नदी का देवता, सच बताऊं प्यास से मारा गया। जब कोई बात इतने खूबसूरत तरीके से कह दी जाती है ना, उसके मायने अपने आप में खूबसूरत होने के साथ साथ इतने सच्चे होते हैं कि उस सच को हजम करना आसान नहीं होता। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ लाइफ ओनली, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे गज़ल्स के सफ़र की तरफ। अगली गज़ल सुकून के एहसास के साथ पहुँच रही है सीधे आप तक भूपिंदर जी की आवाज़ में, दिल ढूंढता है। इन्जॉय द गज़ल।

यूं तो आप हर रोज हमारी रेडियो पिंक सिटी की रहगुजर से गुजरते हैं, लेकिन आजकल आप एक खास रहगुजर से गुजर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा इस रहगुजर में अफसाने हैं, इस रहगुजर में शायरी है, इस रहगुजर में सुफियाना कलाम है। क्या कुछ नहीं है इस रहगुजर में, एक बार गुजर के तो देखिए जनाब। आप सुन रहे हैं FM रेडियो पिंक सिटी और हमारी खास पेशकश रहगुजर।

लता जी एंड भूपिंदर जी की आवाज़ मेरी आवाज़ ही पहचान है, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल आपने सुनी। और बढ़ते हैं आगे, रश्मि है आपके साथ ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। सुबह के 11:30 और पूरे 43 सेकंड हो चुके हैं, शो चल रहा है रह गुज़र। दोस्तों, खामोशी जो बात कह देती है ना, वो बात लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल काम है, या फिर यूँ कहें कि इससे बात की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। गज़ल्स यहीं तो करती हैं ना, इतनी खामोशी से इतनी शिद्दत के साथ बात को पहुंचा देती हैं कि हम बस सोचते रह जाते हैं कि क्या ये वाकई में हकीकत थी या हम कोई खूबसूरत सपना देख रहे थे। और वो सपना भी अगर है तो ऐसे मासूम सपने से बाहर कौन निकलना चाहता है। और मासूमियत ऐसी कि ख्वाब भी जिसकी राह तके, जहाँ पहुँचना बिल्कुल जन्नत जैसा हो रहे गुज़र में, जब कोई साथी आपके साथ होता है, एक ऐसा इंसान जो बस आपका है, और वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। और वो जब होता है तो लगता है कि अब आगे बढ़ना कोई बोझ नहीं रह गया है, कोई काम नहीं है जिसको ख़त्म करना है, ये तो एक रास्ता है जिसे साथ में तय करना है। ऐसी राह है जिसका सफ़र भी खूबसूरत है तो मुकाम भी। फिलहाल हम चलते हैं उस राह पे जहाँ एक प्यारी सी गज़ल आपका इंतज़ार कर रही है। जगजीत सिंह जी की आवाज़ में सुनेंगे आप ये गज़ल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, फ्रॉम द मूवी अर्थ।

यूं तो आप हर रोज हमारी रेडियो पिंक सिटी की रहगुजर से गुजरते हैं, लेकिन आजकल आप एक खास रहगुजर से गुजर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा इस रहगुजर में अफसाने हैं, इस रहगुजर में शायरी है, इस रहगुजर में सुफियाना कलाम है। क्या कुछ नहीं है इस रहगुजर में, एक बार गुजर के तो देखिए जनाब। आप सुन रहे हैं FM रेडियो पिंक सिटी और हमारी खास पेशकश रहगुजर।

0: एक नई खुशी। जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमी कला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुम्हें तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देखकर ही खरीदें।
6: यूं तो आप हर रोज हमारी रेडियो पिंक सिटी की रहगुजर से गुजरते हैं, लेकिन आजकल आप एक खास रहगुजर से गुजर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा इस रहगुजर में अफसाने हैं, इस रहगुजर में शायरी है, इस रहगुजर में सुफियाना कलाम है। क्या कुछ नहीं है इस रहगुजर में, एक बार गुजर के तो देखिए जनाब। आप सुन रहे हैं FM रेडियो पिंक सिटी और हमारी खास पेशकश रहगुजर।
7: वेल, पूरे पूरे 11:46 रश्मि है आपके साथ। इन शो चल रहा है रह गुजर। दोस्तों, प्यार इंसान की ज़िंदगी का वो खूबसूरत एहसास है जो उसे जीना सिखाता है, जो उसे अपने आप के साथ और ज़्यादा खूबसूरती से रहना सिखाता है। जब प्यार ज़िंदगी में महसूस कर पाते हैं तो लगता है आसपास सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और सुकून का एहसास है। और यही प्यार जब आपको गज़ल से हो जाता है तो आप अपने आप को समझ पाते हैं, क्योंकि जो ठहराव है, जो रुकना है, वो गज़ल्स हमें बताती हैं। सोचिए ना, एक शेर, एक बात, एक ख्याल, और ख्याल इतना गहरा कि कहने ही क्या। जब आप शेर सुनना शुरू कर देते हैं, गज़ल और नज़्म को अपनी रह गुज़र में शामिल कर लेते हैं, तो आप महसूस कर पाते हैं कि अंदर कुछ है जो बदल रहा है, जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन बयान करना मुश्किल काम है। यही तो इश्क में भी होता है, और ये मुश्किल भी अपने आप में बड़ी प्यारी सी मुश्किल है, क्योंकि इसमें प्यार है तो तकरार भी, इजहार है तो इनकार भी, और एक कश्मकश है जो अपने आप में कमाल है। लेकिन फिलहाल के लिए वक्त है कमाल से गज़ल की तरफ आगे बढ़ने का। गुलाम अली साहब की आवाज़ में सुनेंगे चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।

निज़ाम अली साहब की आवाज़ में सुनी आपने ये खूबसूरत सी गज़ल, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वेल, स्टूडियो क्लॉक इशारा कर रही है कि वक्त है आपको टाटा बाय बाय बोलने का। तो इसी के साथ मैं रश्मि चाहूँगी आपसे इजाज़त। मैं कहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे बड़ी बात खुश रहिए, क्योंकि खुश इंसान ही अपनी सराउंडिंग्स को खुशनुमा बना सकता है। और जाते हुए मैं अगेन गुलाम अली साहब की ही आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। उनकी एक बड़ी प्यारी सी गज़ल है, कुछ ना किसी से बोलेंगे। तो ये गज़ल आप सुनिए, इसे इन्जॉय कीजिए और हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

श्रोताओं को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने सजाए हैं मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

आप सुन रहे थे वापस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म दोस्ती में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था श्रोता।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार रवि के संगीत निर्देशन में इसे गाया मोहम्मद रफी ने। सहल ध्यानवी की रचना आपने सुनी फिल्म काजल से।
1: ओ

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हकीकत फ़िल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कैफ़ी आज़मी की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था, नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म नील कमल के इस गीत के साथ ही श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी।
4: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
5: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारे बाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में नए अकादमिक भवन, कुलगुरु आवास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का ऑनलाइन अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने टीबी मुक्त और नशा मुक्त राजस्थान के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। श्री बागड़े ने जनजातीय समाज की जल, जंगल और जमीन संरक्षण की परंपराओं पर अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता जताई। अजमेर में एनेस्थीजियोलॉजिस्ट का सम्मेलन आइसाकॉन राजस्थान 2026 कल से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाएं रखी गई हैं। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, चिकित्सा शिक्षक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। आयोजन अध्यक्ष डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि मुख्य सम्मेलन कल और परसों पुष्कर में होगा। इसमें एनेस्थीजिया, क्रिटिकल केयर, रोगी सुरक्षा और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से जुड़े वैज्ञानिक सत्र, व्याख्यान और पैनल चर्चाएं होंगी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी और मिठाई भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ डिब्बों की सुविधा शुरू की है। भरतपुर डाक मंडल के अधीक्षक आनंद सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए तैयार किए गए इन डिब्बों में भेजा गया सामान सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि वाटरप्रूफ डिब्बे की कीमत 30 रुपए है और इसमें 500 ग्राम तक का सामान भेजा जा सकता है। इससे अधिक वजन होने पर पार्सल शुल्क लागू होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर पानी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बरसा। इसके अलावा डग, दानपुर, बिजौलिया और सरवर में 5-5 सेंटीमीटर बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। जयपुर विकास प्राधिकरण के रियायती पौधा वितरण अभियान के तहत अब तक 6638 छायादार और फलदार पौधे वितरित किए जा चुके हैं। जेडीए के अनुसार इस वर्ष आमजन के लिए 85,000 पौधे रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए पे फॉर प्लांट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान किया जा सकता है। पौधों का वितरण रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 12 केंद्रों पर किया जा रहा है। जेडीए ने पौधरोपण की सही तकनीक की जानकारी देने की भी व्यवस्था की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति परीक्षा परिणाम से पहले बिना अधिकृत सूचना के सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य और आंकड़े साझा कर अभ्यर्थियों और आमजन में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से केवल आयोग की अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है।
राजधानी जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। सहकारी मॉडल पर आधारित इस सेवा से यात्रियों को किफायती सफर की सुविधा मिलेगी। ऐप आधारित इस सेवा को दूसरी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की तुलना में 10 से 15 फीसदी कम किराए वाला बताया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है श्रोताओ इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। मोहम्मद रफ़ी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें ज़रूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओ बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण थाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक श्रृंगार रस से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें 16 मात्राओं में ताल जो है वो बंधी हुई है, यानी त्रिताल की बात हम कर रहे हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी के कौशल को अगर देखें तो जिस परफेक्शन के साथ उनका आलाप ताल तान और सरगम का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक बड़ी ही उच्च कोटि की शास्त्रीय गायकी क्षमता को दर्शाता है। गाने की शुरुआत में आपने मनमोहक जो आलाप सुना।

वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। और बीच में जो पखावज तबले के बोलों और शास्त्रीय तराने का मिश्रण इस रचना को बड़ा ही दुर्लभ बनाता है, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरी शिद्दत और सटीकता के साथ निभाया है। और यही कुछ वजहें हैं कि जिससे मोहम्मद रफ़ी हम सबके दिलों में बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी ऐसी ही थी। जब रफ़ी साहब गाते थे तो लगता था जैसे कोई सीधे दिल से बात कर रहा हो। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, दुआ भी, प्रेम भी और भक्ति भी। रफ़ी साहब एक गायक नहीं, एक एहसास थे, और एहसास कभी मरते नहीं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र करते रहते हैं, बिल्कुल उनके अमर गीतों की तरह। आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन किया है और हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी की खूबियों को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी भी मूड में हो, मोहम्मद रफ़ी के गाने हमें सुकून देते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कब आप मोहम्मद रफ़ी के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीत गम में भी हमारे साथी हैं और खुशी में भी। कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं ये आप हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय भजन सुख के सब साथी फिल्म गोपी का इन्होंने याद किया है, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वो जादुई आवाज़, सांसों का सरगम, जिन्हें प्रभु की अपार कृपा से भक्तिभावपूर्ण भजनों की माला पहनाई गई हो, बड़ी शिद्दत से तराशा कोहिनूर रहे रफ़ी साहब को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। आपको ये फिल्म पहचाननी है।

फिल्म सूरज का ये गीत था, आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ, हस्र जयपुरी कृष्णा थी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में राग शिवरंजनी का प्रभाव इस गीत में नजर आता है। एक बहुत ही सुंदर संवेदनशील और रोमांटिक प्रकृतिक राग है ये श्रोताओ, जो दिल के तारों को झकझोर देता है। इस राग में अगर आप ध्यान देंगे तो सारे ग प ध स्वर लगते हैं। रफी साहब ने इस राग की कोमलता और ठहरी हुई मिठास को अपनी आवाज में जिस तरह से उतारा वो रूह को छू लेती है। और अगर इस गीत के आरोह अवरोह के फैलाव की बात करें तो बहारों फूल बरसाओ की जो उठान सीधे मध्यम और उच्च स्वर के सहज सफर के साथ होती है, जो सुनने वालों के मन में उल्लास भर देती है। गले की लोच की बात क्या कहें कि शब्दों का उच्चारण के जो साथ साथ मींद यानी सुरीला खिंचाव और गमक का प्रयोग इस गीत में किया गया, उसे ये शास्त्रीय दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है। बिना किसी अतिरिक्त आप देखेंगे कि भारीपन और बनावट के केवल भावनाओं की गहराई से इस राग को जीवंत किया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो ये गीत आप सुन रहे थे और उनकी याद हम ताज़ा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गुल बलोच फिल्म की बात की है। जी हाँ, ये फिल्म थी और जो पहला रिकॉर्डेड गीत था सोनिए निहेरियानी, ये गीत था जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गुनगुनाया और ये रिकॉर्ड बन पड़ा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के संगीत के कोहिनूर हैं मोहम्मद रफ़ी जी, जिसकी आवाज़ एक अलग अंदाज बनकर हम सभी संगीत प्रेमियों के दिल में बस गई। हम जब भी मोहम्मद रफ़ी जी का कोई दर्द भरा गीत सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और ये उस जादुई आवाज़ का करिश्मा जो शायद ही दूसरे कोई गायकों में ऐसी काबिलियत होगी। ऐसे महान और दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी जी को विनम्र नमन। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम रूहानी आवाज़ के दौर में जन्म हमने लिया है, वो आवाज़ जो हर किसी को हर तरह के गानों में सुकून देती है, तो आज भी मिसाल गाने सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, यूं तो बहुत सफ़र किए हमने, हर राह से कुछ सिखाया है, पर विविध भारती का सुरीला सफ़र दिल के सबसे करीब आया है। तो मिलते हैं। और एक और श्रोता लिखती हैं कि ब्रज में होली खेलत नंदलाल, रफ़ी साहब ने इस गीत में गजब का उत्साह और उमंग भरा है। शुरुआत में पारंपरिक जोगीरा सारा रारा की गूंज और उसके बाद रफ़ी के खुले गले से निकला स्वर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देता है। और इस गीत को पहचानिए, कौन है अदाकार।

फिल्म ससुराल का ये गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण थाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण।

कल्याण ठाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण करता है। ये गीत अंतरे में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार और अदायगी का अंदाज है वो इतना सहज है कि तकनीकी रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। तो भला बताइए कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं? यही है कि हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अभी तो स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफ़ी साहब के राग रंगों से सजी सफर का इंतज़ार है। जी हाँ बिल्कुल, ये सफ़र तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी को समर्पित लग रही है। जी हाँ बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफ़ी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ, ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं।

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोता, रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज़ जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसर

रफी साहब की आवाज़ ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया। मगर आज भी वो आवाज़ हमारी सुबह को, हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफ़ी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती। उनकी आवाज़ जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफ़ी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफ़ी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे, जो ग्रामाफोन पर बजते थे, उनकी जो यादें थीं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं श्रोताओं। यानी हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब के गीतों की कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफ़ी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो। और इन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफ़ी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज़ जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओ, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।

0: जाके आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा।
1: जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार बताने हैं। ये गीत जो आधारित था राग मिश्र भैरवी या दादरा अंग की खुशबू से सजा हुआ ये गीत हम कह सकते हैं। वैसे रफ़ी साहब की आवाज़ जो है इसमें एक इस गीत में अनोखी तड़प और नरमी नज़र आती है और जो एक फुसफुसाहट सी रूमानी एहसास लिए जो रफ़ी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गज़ब का है श्रोताओं। जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर स्वरों के या उनके गले के ठहराव, स्वरों के आरोह अवरोह की बात करें तो कभी दर्द ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वाद्य यंत्रों की अगर हम शैली की बात करें तो शंकर जयकिशन ने इसमें वेस्टर्न और इंडियन धुनों का बेहतरीन सम्मिश्रण किया है। लेकिन अगर गाने की बात करें तो इसमें आत्मा पूरी तरह से रफ़ी साहब के रसीले और लोचदार स्वरों पर टिकी है जो प्रेमी को बेचैन कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफ़ी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज़ हैं जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि

एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफी जी। उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता, भक्ति की पवित्रता, देशभक्ति का जोश था, दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिलाहट भी। वे जिस अभिनेता के लिए गाते, ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों। यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज जो है आपको किस अभिनेता पर खास जचती हुई नजर आती है, और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया, फिल्माया गया, वो आपको बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं, खासकर हम बात करें महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की। तो

अभिनेता भारत भूषण पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज थी। नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी की लिखी ये रचना थी। श्रोताओं, राग मालकौंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींड का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इससे नजर आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते

रफी साहब के कोई रिकॉर्ड्स क्या अभी आपने संभाल रखे हैं? श्रोताओ, तो आप हमें बता सकते हैं। काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये एक। मोहम्मद रफ़ी ने अपने जादुई आवाज़ का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफ़ी साहब की अगर आवाज़ को आप सुनेंगे तो गजलनुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफ़ी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहनशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूँगा और यही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफ़ी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हों तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है

मतनू हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी जी की अमर आवाज़ की झलक समाई हो, आ जा रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे, जैसे गाने भी उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था। उन्होंने इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक पढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी, और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियां थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी, और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं, विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तारिक और काजल किरण पर फिल्माया गया, जो नज़र आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं, रफ़ी साहब की आवाज़ हमें अच्छी लगती है शमी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शमी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ किस तरह से डिटेल लिखी है कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा इन्होंने, और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज़्यादातर कि रफ़ी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री मुमताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओ, और ये जो गीत है वो उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप बताएं कि ये खासी ड्रेस किसने डिजाइन की है।

शमी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी साहब के। वैसे श्रोताओं, बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफ़ी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नज़र करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज़्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो तो आप हमसे ज़रूर बता सकते हैं।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: मेरे साथी आज मौसकी को तुझ पर नाज है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्य स्मृति को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम था सुरीला सफ़र। आप सभी का साथ रहा श्रोताओं इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाज़त, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े।

0: रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ये परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
1: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ेराम हेडगेवार थे।
0: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
1: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड ना होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं।

0: लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉइसराय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया, इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी।

0: पर उससे भी बढ़कर ये प्रभाव था इसी आंदोलन के समय हथियार के रूप में उपयोग किए गए वंदे मातरम इन शब्दों का। इस आंदोलन के बहाने वंदे मातरम इन दो ही शब्दों में मौजूद आग की तपिश ब्रिटिश राज सिंहासन तक पहुंच गई थी। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलते समय वंदे मातरम पर लगाई गई पाबंदी और प्रतिबंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था और इन शब्दों के कारण आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम।

20वीं कड़ी मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
5: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल छनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
6: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 268,000 लोग बाढ़ के पानी में

0: फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खोरधा जिले के कई गांवों को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक नई खुशी। जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569699।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर। आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: संगीतकार रवि का सर्वदिकिया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मन।

0: के पतवा सर के डोले मनवा के ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ।
1: मोहम्मद रफी का गाया गोदान फिल्म का गीत आपने सुना, अनजान की रचना थी, रविशंकर की तर्ज थी।

ये रास्ते हैं प्यार के, फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे इस गीत के साथ ही अब संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी के गाए चुनिंदा नगमे। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
0: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: जी हेलो सहेली।
0: नमस्ते।
1: जी नमस्ते मैम।
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, दो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ, ये चलते ही रहता, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाने लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हमें जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ, और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है।
0: जी जी
1: रहता है
0: यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
1: जी।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। सत
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी।
0: श्री अकाल। बताइए कौन सी
1: हाँ
0: सहेली ने
1: जी, हम
0: फोन लगाया
1: दीदी
0: है?
1: पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से
0: अपना नाम बताइए।
1: जी। रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी,
1: हाँ जी
0: बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, और
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: बताइए कि आपके शौक क्या-क्या हैं?
1: जी शौक तो यही है जी। मैं तो ज्यादातर जी घर में ही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं?
1: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट।
0: जी, और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते, वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: जी। रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेलीज पे, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत जो भाइयों का आता है, फौजियों वालों, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: जी, तो बताइए कौन
1: हाँ,
0: सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: मंजिल फिल्म का मुझे, रिम झिम गिरे सावन।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैम। मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ
0: रितु राजपूत। कहाँ से फोन लगाया है
1: मैम। ग्राम सरायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ
0: बताइए। रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम। घर पर रहकर काम करते हैं।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम है, एक दो लोग हैं
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम। हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहती हूँ मैम।
0: जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको। जी बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिस्टर आर्टिस्ट है। मैं उनके

0: हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
1: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं।
0: जी हाँ
1: जी जी जी। अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
1: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए, अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
0: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होती है। अभी रुकी हुई है लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
1: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और बताइए, रेडियो कब सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
0: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरे शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद में छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जी मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
1: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजबीये नागपुर से बोल रही हूँ मैम। जिंदगी
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ, खुद
0: अच्छा
1: का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए संगीत से दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है वो गीत, तो जाएंगे हम मासूस पर।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में वक्त हो चुका है अंतराल का।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी बताइए, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
2: मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
1: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
2: बिल्किस ने।
1: बिल्किस जी, जी बताइए हाँ। क्या करती हैं आप जिंदगी में?
2: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ।
1: शॉल बनाती है जी?
2: हाँ।
1: शॉल की बुनाई करती है जी?
2: हाँ दीदी।
1: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
2: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती
1: हूँ। जी जी जी, चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: दीदी मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
1: जी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, प्रेरणा
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: शर्मा बोल रही हूँ। मैं बैतूल जिले से, मध्य
0: जी प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी,
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम करती हैं।
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
0: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर ट्राइबल एरिया है। ये बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है जी।
0: जी
1: बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरी लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
0: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी। मैं
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ, मुलुंड से।
0: जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में।
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी
1: हाँ
0: हुई हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी आपने
1: बिल्कुल
0: रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम। बराबर
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे, और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, वो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं और सब

0: अने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
1: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
1: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी, मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी। स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी।
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा

0: जाते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं, जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
1: जी सचमुच, दोस्त जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
0: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
1: जी
0: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
1: जी
0: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख दुख बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
1: जी यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आपका दिन का बिल्ला है उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
0: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
1: जी
0: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली।
1: जी तो हम सभी को ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं बेचारे भूखे होते हैं तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज़ पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
1: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी? कहाँ से बात कर रही हैं आप
1: जी, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: जी? मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात
1: जी।
0: बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: हाँ जी, मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ
0: जी, मासूम फिल्म का गाना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं, 400-24662, यानि 400-24662। दूसरा नंबर है 28670-288, यानि 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानि 022। चलते चलते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, उन्हीं के स्वर में। तुम रूठी,
1: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।

0: कहाँ रख दिया मैंने। कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं। अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूँ आलोक, बस बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया। दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहाँ छोड़ आई थी, जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी, आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था। अब और कितना प्लान करूं, इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा। और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यही मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करें, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर यह तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह। और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। ए ताई, पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर

देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके कंगन वगैरह खरीदने लगीं। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।
2: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3,00,000 से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच, इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कह

वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया? सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए। बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई। सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ, हो तो बहुत कुछ सकता है।

बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ। सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादा आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या?

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि

0: है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए ताई, दादर उतराए से तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा

का संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच, पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था, पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है, शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे, न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच, वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी
2: एडमिशन भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।

छाए गीत के सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। जान आती है तेरे आने से, डूबता जी है तेरे जाने से, आपके आने से एक फजा बनती है, हम सांस भी ले तो खुशबू बनती है, कोई कुछ भी कहे आपके आने से ही सुहानी शाम बनती है।

सिंगार मेरा है उनके लिए, मेरी हर बात में बात है उनके लिए। यकीन है मुझे छुप छुप के जो आता है अभी मेरी गली में, एक रोज मेरे साथ सरे आम चलेगा।

सजना है मुझे यूं ही हंसी ख्वाबों की तरह, तेरी नजरों में बस जाऊं अदाओं की तरह, महके हैं गुलाब यूं जूं तेरी हंसी में, अब तो सजने को तैयार हूं तेरे प्यार की तरह।

0: छाए गीत के बाकी के नगमे होंगे इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

रगों में घुला है ये प्यार का मौसम, रगों में घुला है ये प्यार का मौसम, तू न जाना मेरे दिल के पास रहे तू हर दम, तेरी आहटें हों जब साथ, बढ़ जाती है उमंग, तू मुझसे दूर

0: हमसे न जाओ दूर, हमसे न छुपाओ नजरें, तुम बिन अधूरी है दिल की तमन्नाएं। हमारी मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे, हमारी चाहतों में रंगीन शाम की यादें बसती रहें, बस यही तो है तमन्ना।
1: Ha ha ha ha ha!

आप जहां भी रहते हो हमारी दुआओं में रहते हो, दिल की धड़कन में कभी तो कभी आंखों में समाए रहते हो। दूरी का एहसास ही नहीं होता, हमारी यादों में आप हर पल रहते हो।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं, असरदार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ
3: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सु आयो विनायक, करो ये नसीती विने धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जाँच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मोपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, कोयला फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी और आप सुन रहे विविध भारती का जयपुर केंद्र FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY को मंजूरी दे दी है। साथ ही पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के जरिए इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाई गई है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। इसमें वर्तमान जलाशयों, नहरों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग होगा। योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
1: इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टिक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है, जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सबका उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकना और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक सदन में पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जयपुर राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज से 2 अगस्त तक हो रहे इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है। सम्मेलन में 8 तकनीकी सत्र रखे गए हैं। इनमें मध्यस्थता, न्याय तक प्रभावी और समावेशी पहुंच और कानून के शासन को मजबूत करने सहित अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा शांति मध्यस्थता है। इसके जरिए पक्षकारों की आपसी सहमति से समाधान पर जोर दिया जाएगा और समाज में शांति और सौहार्द की आवाज को बुलंद किया जाएगा। जयपुर में आज से इंडिया ट्रेवल मार्ट की शुरुआत हुई। पर्यटन उद्योग में नए अवसरों, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन रखा गया है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: ITM देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटक मेलों में से एक है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट्स, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं। ITM में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी। रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया है कि सरकार जल्दी ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी। इसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि इन चुनावों की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी होगी।
3: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव दो चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव चार चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
0: नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर कराए जाएंगे। श्री खर्रा आज झुंझुनू के कमालसर गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां इस साल मार्च में ही पूरी कर ली गई थी। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग के जिम्मे है।
4: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी कर। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता वो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो हम तुरंत उपलब्ध।
0: प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया जा रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि ये सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री प्रसाद ने आज वीसी के जरिए खरीफ फसल की गिरदावरी के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वीसी में राज्य के सभी जिलों के

0: सहित अन्य योजनाओं के लिए आधार प्रदान करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल से देशभर में स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है, जिससे हर बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत मिल सके। राज्य पीसीपीएनडीटी टीम ने जोधपुर में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि आरोपी निजी नर्सिंग होम पर पिछले काफी समय से ये काम कर रहा था। उसके कब्जे से पोर्टेबल मशीन और परीक्षण के एवज में ली गई 50,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी परियोजना निदेशक सोनल मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलि जोरवाल की अगुवाई में टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई। प्रदेश में साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की ओर से लोगों से किसी भी संदिग्ध लिंक या अनजान व्यक्ति के कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मित्री ने लोगों से किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने या नजदीकी पुलिस थाने को संपर्क करने को कहा है।
1: तो मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी छोटे से कमीशन के चक्कर में आप स्वयं अपराध के जगत से ना जुड़ें। संचार साथी पोर्टल ये भारत सरकार द्वारा खोला गया है। आपके परिवार में कोई भी समझदार व्यक्ति है तो आज आप जाकर दो काम करें। एक तो बैंक में अवश्य चेक करें कि कहीं कोई इस तरीके के अकाउंट में आपका अमाउंट तो नहीं आ रहा जो आपकी नॉलेज के बाहर है, और नंबर दो, आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई है। तो ये आपको संचार साथी पोर्टल पे आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, तथा आपके परिवार में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें आपको मदद कर सकते हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। पिछले महीने जिले में रोजगार, जनकल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। अच्छी मानसूनी बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पास रिफाइनरी का लोकार्पण कर प्रदेश में सरकारी नौकरी में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके तहत भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी कार्यक्रम हुआ, जहां नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने, विकास कार्यों में तेजी बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा में शहरी जन कल्याण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम और नगर विकास न्यास में लगाए गए शिविरों का अवलोकन कर लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आने वाले लोगों के काम तय समय में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को राहत मिले। जिले में मॉनसून की अच्छी बारिश का असर अब खेतों और जलाशयों में दिखाई देने लगा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से

0: नदी, तालाब और बांधों में पानी की आवक हुई है। आसींद क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश से खरीफ फसलों को भी संजीवनी मिली है। मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार और तिल की फसलें अच्छी स्थिति में हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह अनुकूल रहा तो इस बार उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। श्रावण माह के शुरू होने पर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तिलस्वा और हरिणी महादेव सहित विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और सहस्त्र धारा की जा रही है। सुबह से देर शाम तक श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर में पूरे सावन माह के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। मामले की जांच जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने दूर दराज से उपचार के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष देखभाल वार्ड की व्यवस्था भी शुरू की है। अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर सभी विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए रिटर्निंग अधिकारियों तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रशासनिक काम भी शुरू कर दिए गए हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार के केंद्रीय दल ने भीलवाड़ा का दौरा किया और समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले के सभी 14 विकास खंडों में 831 विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। विदेशों में रहने वाले भाइयों तक समय पर राखियां पहुंचाने के लिए विशेष लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में बहनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और विदेशों के लिए राखियां बुक कराई हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे सदारत माए आज हुई कैबिनेट री मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। ऊर्जा भंडारण सारू पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई चावेला। राष्ट्रमंडल देशारो न्यायिक महाकुंभ जयपुर माए शांति मध्यस्थता और कानून रा राज ने मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव सारू 15 अगस्त ने अधिसूचना जारी करी चावेला और राज्य में काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना ने मंजूरी देनी है। इस आगे पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया री मियाद 5 साल सारू बधावन रो फैसलो करीचियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज भी कैबिनेट री मीटिंग माए कई खास फैसला करीचिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने मीटिंग माए करीचिया फैसला री जानकारी देनी। वे बतायो कि जल निकाया माथे फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू करण सारू प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाईची है। मंत्री बतायो कि सारू 5,070 करोड़ रुपया रो बजट राखीचियो है। वे कहो कि इन योजना रा तहत 5,000 मेगावाट री 3,300 फोटोवोल्टाइक परियोजना विकसित करी चावेला। श्री वैष्णव कहो कहीं सारू जनतारी और जमीन लेवन री जरूरत नहीं वेला। 5 साल री ई योजना

0: तारू मौजूदा जलाशय नहरा और तलाव काम लिया जावेला।
1: इस स्कीम में टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा।
0: संसद रात दोनों सदन की कार्रवाई नीट पेपर लीक मुद्दा में था विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन रे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा में था विपक्ष रो हंगामो आज ही चालतो रहो। लोकसभा में शोर शराबा बीचे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 पास करती उचियो। इन बिल रो मकसद जन्म और मौत रा पंजीकरण में मोड़ो वेवणु रोकण सागे फर्जी कागजात माथे रोक लगावणु है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सदन में ओ बिल पेश कीनो। विपक्षरा हंगामा बीचे बिना चर्चा ओ बिल पास करती उचियो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ई बिल माथे चर्चा में शामिल नी वेवण पर विपक्षरी आलोचना कीनी। संसद रात दोनों सदनारी कार्रवाई सोमवार ताई टालती रिची है। जयपुर में आज राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन शुरू हो रहा है। 2 अगस्त ताई चलने वाला इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों रा जज, कानून रा जानकार, नीतियां बनावण वाला और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं रा नुमाइंदा शामिल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस सम्मेलन रो उद्घाटन कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाली मौजूद है। सम्मेलन रा 8 तकनीकी सत्र में मध्यस्थता, न्याय ताई सगला री असरदार पहुंच और कानून रा राज ने मजबूत बनावण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करयो जा रहा है। सम्मेलन री सबो खास बात शांति मध्यस्थता है जिन रे जरिए पक्षकारा रा आपसी राजीनामाओं समाधान माथे जोर दियो जावेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जनजातीय हलका माए ऊंचा दर्जारी भणाई ने बधावो देवण सारू बत्तियों बत्ती कोशिशा करण माथे जोर दीनो है। वे आज जयपुर रा लोकभवन बांसवाड़ा रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय माए बनाई जिया नुआ अकादमिक भवन रो उद्घाटन करण और स्वामी विवेकानंद री मूर्त रो अनावरण करण रे मौके बोल रहा हा। राज्यपाल कहो के आदिवासी जल, जंगल और जमीरा साचा पहरेदार वे है और वाणी पानी और कुदरत ने बचावण जुड़िया रीति रिवाज माथे शोध और अनुसंधान करो जावणु चाहिए। राज्यपाल प्रदेश में नशारी लत जड़ू खत्म करण सारू स्थानीय लोगों चर्चा कर और लगातार कोशिशा करण बाबती कहो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम में ऑनलाइन तरीकाओं शामिल भया। जयपुर में आज इंडिया ट्रेवल मार्ट शुरू हो। सैर सपाटाओं जुड़िया कारोबार में नुआ मौका, निवेश और भागीदारी ने बधावो देवण सारू ओ आयोजन राख्यो जा रियो है। 2 अगस्त ताई चालन वाला इंडिया ट्रेवल मार्ट रे बारा में और ब्यूरो समाचार कक्षों।
2: ITM देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटक मेलों में से एक है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट्स, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं। ITM में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी। रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह कहो है कि सरकार बेगोई आरक्षित वार्डा रो ऐलान करेला जिन पाछे निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां ने अंतिम रूप दियो जावेला। आकाशवाणी सागे खास बातचीत रे दौरान वे बतायो कि चुनाव री अधिसूचना 15 अगस्त न जारी करी जावेला।
3: देखिए, ये पहली बार है जब

0: सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव दो चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव चार चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
1: ए बीच नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहो है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन रा आधार कराया जावेला। श्री खर्रा आज झुंझुनू जिला रा कमालसर गांव में राखी जाए गैर सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। वे कहो कि महकमा री ओर चुनाव जुड़ी सगली तैयारियां इस साल मार्च महीना में ही पूरी कर ली रही ही।
2: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी कर। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता जो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो हम तुरंत उपलब्ध।
1: प्रदेश में काल खरीफ क्रॉप डिजिटल सर्वे शुरू करियो चावेला। राजस्व मंडल रा रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद आ जानकारी दीनी। वे बतायो के ओ सर्वे राज्य रा सगला जिला नी तहसीला और राजस्व गांव में ऑनलाइन तरीका करायो चावेला। डिजिटल क्रॉप सर्वे रा तहत प्रदेश रा 4,62,00,000 बत्ता खसरा रे नियमारे मुजब गिरदावरी करी जावेला। सर्वे सारू खेती लायक 2,86,00,000 खसरा रे पिछाड़ करी ची है। बाकी खसरा माए सरकारी जमी और गैर खेती री जमी री गिरदावरी करी जावेला। राजस्व मंडल रा रजिस्ट्रार बतायो कि राज खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप ऑनलाइन गिरदावरी रो सुबितो दियो जावेला। ध्यान जोग है कि सर्वे में मिलन वाला जानकारी साखारी उपज रो आकलन करण सागे नीति बनावण पीएम फसल योजना और प्राकृतिक आपदा राहत समेत न्यारी न्यारी योजना में सारू बुनियाद रो काम करेला। कालू आखा देश में स्तनपान सप्ताह मनायो जावेला। स्वस्थ भारत सारू परिवारा समुदाय और स्वास्थ्य सेवा देवन वाला बीच स्तनपान जुड़ी जाग जगावण रा मकसद ओ सप्ताह मनायो जावेला। नुआ जन्मिया बाड़क रा विकास सारू स्तनपान सबू असरदार जतन है। ए मौके महिला और बाल विकास मंत्रालय रे ओर स्वास्थ्य पेशेवरा सामुदायिक कार्यकर्ताओं और जनताओं स्तनपान सारू जरूरी वातावरण बनावण री अरज करी ची है। राज्य पीसीपीएनडीटी टीम जोधपुर माए पेट माए पल रहा बच्चा रे लड़का या लड़की विवरण री गैर कानूनी जांच रा आरोप माए एक जना ने गिरफ्तार किन्नो है। मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम बतायो के आरोपित रे एक नर्सिंग होम माए लाडला भगत नु ओ काम करण री जानकारी मिली है। पकड़ी जा मिनक हूँ पोर्टेबल मशीन और जाँच री एवज माए लीरी जी 50,000 रुपया री रकम बरामद करी जी। प्रदेश में साइबर ठगी और ऑनलाइन तरीकाओं करी जावन वाली धोखाधड़ियों बचाव सारू पुलिस जनताओं किणी शंका लायक लिंक या अनजान नंबरों फोन आवण पर सावचेती राखण री अरज कीनी है। सवाई माधोपुर री एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी जनताओं साइबर ठगी भेवन री सूरत में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 माथे शिकायत दर्ज करावण या नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करण सारू कहो।
3: तो मेरा आपसे निवेदन है कभी भी छोटे से कमीशन के चक्कर में आप स्वयं अपराध के जगत से ना जुड़ें। संचार साथी पोर्टल ये भारत सरकार द्वारा खोला गया है। आपके परिवार में कोई भी समझदार व्यक्ति है तो आज आप जाकर दो काम करें। एक तो बैंक में अवश्य चेक करें कि कहीं कोई इस तरीके के अकाउंट में आपका अमाउंट तो नहीं आ रहा जो आपकी नॉलेज के बाहर है, और नंबर दो आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई है। तो ये आपको संचार साथी पोर्टल पे आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं तथा आपके परिवार में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें आपको मदद कर सकते हैं।
1: हिंदी साहित्य रा महान कथाकार और उपन्यास सम्राट कहा जावन वाला मुंशी प्रेमचंद री आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रे जरिए मुंशी प्रेमचंद ने श्रद्धा भाव सागर याद करता था का कहो के वे वारी कालजयी रचनावा रे जरिए इंसान री भावना मान मजबूत तरीका रखी रमारो साहित्य हमेशा सीख देतो रहवेला। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। ऊर्जा भंडारण सारू पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई जावेला। राष्ट्रमंडल देशारो न्यायिक महाकुंभ जयपुर में शांति मध्यस्थता और कानून रा राज न मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो जावेला। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव सारू 15 अगस्त न अधिसूचना जारी करी जावेला और राज्य में काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो जावेला। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे विविध भारती का जयपुर केंद्र FM 100.3 MHz पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रोजा से, आवाज़ हरिहरन की थी। गीत के बोल पीके मिश्रा के और संगीत एआर रहमान का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाज़ें लता मंगेशकर और उदित नारायण की थी। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म डुप्लीकेट से। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। गीत की रचना जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: दिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म लम्हे से। आवाज़ें लता मंगेशकर और हरिहरन की थी। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत शिव हरी का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: म्यूजिक कंपोजर सिंगर
3: जी,
2: ये तो बेमिसाल है, हम जानते हैं। इन्होंने अनुपमा, कोहरा, 20 साल बाद ऐसे जबरदस्त फिल्मों में इतने जबरदस्त गाने दिए, ऐसी भी बातें होती है, धीरे धीरे मचल, कहीं दीप जले कहीं दिल, झूम झूम झूमती रात
3: जी, जी।
2: और हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू फिल्म खामोशी से, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा ही जबरदस्त अंदाज में आपको इस गाने में मिलेगा।
3: हाँ, चलिए सुनते हैं दो दिल फिल्म का ये गाना।

0: राजीव जी, दो दिल फिल्म से वो नायाब गीत आपने हमें सुनवाया जो 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और किसी वजह से गीत लिया था। आगे बढ़ते हैं और अब किस गीत को हम सुनने वाले हैं, अपने श्रोताओं को क्या सुनवाएंगे हम?
1: अभी देखिए 1973 में,
0: हाँ
1: 1973 में एक फिल्म आई थी जो जरा भी नहीं चली।
0: अच्छा
1: उस फिल्म का नाम था प्यासी नदी। उस फिल्म के जो
0: हाँ
1: कंपोजर थे, एक जोड़ी थी रतनदीप हेमराज,
0: जी जी जी
1: जिन्होंने कुछ ही फिल्में की, छोटी छोटी फिल्में की, जैसे शैतान मुजरिम, राख और चिंगारी, ऐसी
0: जी
1: छोटी अननोन, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिना कोई पॉपुलैरिटी की फिल्में, ऐसी बहुत ही अनजान फिल्मों का उन्होंने म्यूजिक दिया।
0: बिल्कुल, ये जोड़ी भी बहुत पॉपुलर नहीं हुई कभी।
1: हाँ, तो ये प्यासी नदी जो फिल्म है, इसमें मुकेश जी और चंद्रानी मुखर्जी ने एक
0: हाँ
1: बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया है जो
0: अच्छा
1: उस वक्त थोड़ा बहुत रेडियो पर चलता था, लेकिन अब लोग पूरी तरह उसको भूल गए हैं। ओ रे सजनवा, एक गाना लिखा है ताजदार ताज साहब ने,
0: अच्छा
1: और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए सुनते हैं।

0: क्या बात है, प्यासी नदी फिल्म के उस गीत को हमने याद किया जिसमें एक अलग सा कॉम्बिनेशन है गायक कलाकारों का, मुकेश और चंद्राणी मुखर्जी। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, और अब कौन सा गीत आने वाला है हमारे श्रोताओं के लिए राजीव जी?
1: अब देखिए, एक फिल्म थी ऊंचे लोग।
0: हाँ,
1: ऊंचे लोग फिल्म के चार ही गाने थे, उसमें से तीन जबरदस्त गाने थे, हाय रे मेरे चंचल नैनवा जो लता जी का था, और रफी जी का वो क्लासिक गाना जाग दिले दीवाना।
0: हाँ,
1: ये गाने बहुत ही मशहूर हुए, फिल्म खास चली नहीं, राजकुमार थे, फिरोज खान थे, फिर भी ये फिल्म चली नहीं। और इसके गाने मजरू साहब के थे, म्यूजिक चित्रगुप्त का था, लेकिन इसमें वो एक गाना था जो उस वक्त तो पॉपुलर हुआ था
0: जी,
1: लेकिन अब मुझे खास सुनाई नहीं देता है, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का ये ड्यूट,
0: जिसके बोल हैं
1: इसके बोल है आजा रे मेरे प्यार के राही।

0: अब जिस गीत का जिक्र मैं करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही अलग गाना है मदन मोहन जी के स्टाइल के लिए।
1: अच्छा,
0: वो उन्होंने आशा भोसले जी से गवाया है, हसरत जयपुरी के बोल है। एक फिल्म थी महाराजा, नूतन और संजय खान उसमें लीड पेयर थे।
1: अच्छा,
0: उसमें से एक लता जी का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था,
1: हाँ,
0: तुमसे
1: हाँ,
0: बिछड़ के चैन कहाँ हम पाएंगे।
1: हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर है।
0: हाँ, तो उसी में ये एक मेरे ख्याल से कैबरे नंबर लग रहा है मुझे,
1: हाँ
0: लेकिन बड़ा ही वेस्टर्न ओरिएंटेड रिदमिक नंबर।
1: चलिए सुनते हैं।

0: तो महाराजा फिल्म के इस नायाब से गीत को हमने याद किया और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड अब पूरा हो रहा है। राजीव जी, अपने श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।
1: जरूर, अगली कड़ी में जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर और अपना ख्याल रखिए।
2: अनमोल यादें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।
3: ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम हवा महल।

हवा महल में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं हरीश दीक्षित। बूढ़ी काकी।

0: काकी।
1: कौन? लाडली बेटी।
0: देखो काकी क्या लाई हूँ।
1: क्या लाई है? अरे गुड़ छबेना।
0: हाँ
1: कितना ध्यान रखती है मेरी लाडो इस बुढ़िया का।
0: काकी बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ।
1: अच्छा,
0: नहीं तो भैया ने मेरा हिस्सा हड़प ही लिया होता।
1: बड़े नटखट है वो।
0: खाओ ना काकी।
1: ला देना।
2: खा रही हूँ बेटी, खा रही हूँ।
0: रोती क्यों हो काकी?
2: कुछ नहीं बेटी, अपने कर्म पर रो रही हूँ। मेरा सब कुछ है, फिर भी दाने दाने को तरसती हूँ। अपने ही घर में औरों की मोहताज हूँ।
3: जरा भी शांति नहीं है इस घर में। काकी, ओ काकी, जब देखो खाने के लिए रोना कोसना हद होती है किसी बात की। अरे काहे की मोहताज, उम्र हो गई पर चटोरी जीभ पर काबू नहीं पाया, बस खाना खाना।
2: इस आग लगी मेरी जीभ के कारण सब सुनना पड़ता है। ठीक है बेटा बुद्धिराम, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा। मेरी हिम्मत ही फिर गई थी जो।
3: क्या बके जा रही हो? और तू यहाँ से भाग भाग यहाँ से। देखो काकी, हजार बार कह चुका हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता।
2: हाँ, अब क्यों बर्दाश्त होगा? उस वक्त सब बर्दाश्त करने को तैयार था ना, उस वक्त तो।
1: चुप हो जाओ काकी।
3: अरे काकी चुप हो जाओ।
1: चुप हो जाओ।
3: अरे काकी, मैं जो हूँ तुम्हारा भतीजा, अब काहे की चिंता करती हो?
2: क्या करूं बेटा, पहले तेरे काका नहीं रहे, फिर दोनों जवान बेटे चले गए, उनका सुख भी ना देख पाई।
1: शांत हो जाओ, धीरे धरो। काका जी ना रहे तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं।
3: हाँ काकी, हम आपकी सेवा करेंगे।
1: हाँ काकी, हम आपकी सेवा करेंगे।
3: मौका तो दीजिए। हाँ। हम गैर हैं क्या भला? हिम्मत से काम लो काकी, हिम्मत से। अपने भतीजे को अवसर तो दो सेवा करने का।
2: हाँ काकी, जब तक सांस है पत्थर तो धरना ही पड़ेगा कलेजे पर, और मेरा है ही कौन, पड़े रहूंगी भैया तुम्हारी शरण में।
1: कैसी बातें करती हो काकी।
3: काकी काहे की शरण, हम आपकी शरण में हैं।
1: हाँ काकी, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी सेवा करेंगे।
2: हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। तब तक तो मैं संपत्ति ही मालिक थी, पर अब तो मेरे हाथ कट गए हैं। संपत्ति का मालिक वो है। कैसी नासपीटी घड़ी थी जब मैं उसकी बातों में आ गई और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पर कर दी। अब नसीब में है ये कोठरी,

0: बड़ी कृपा की।
1: कृपा काहे की रे, अपने भतीजे के टीके में ना आएंगे?
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं। बैठू, मैं और काम निपटा लूं। ये रहा आटा और ये रहा घी, और जरूरत हो तो आकर ले जाना।
2: अरे भाई, वो भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो।
0: देती हूँ भाई, देती हूँ। ये लो भाट का सीधा। अरे चंदा, तू यहाँ क्या खड़ी है?
1: वो ढोलक मजीरा उतार दो भाभी।
0: ये ले, कमाल है भाभी।
1: क्यों री, कैसे अकेले भंडार से रसोई में, रसोई से आंगन में दौड़ दौड़ कर सारा काम फटाफट निपटा रही हो?
0: अरे अभी फुर्सत कहाँ है तेरी बात सुनने की।
2: अरे भाई, भोजन में अब कितना विलम्ब है।
0: ओ, अभी हुआ जाता है। देखो उधर क्या हो रहा है। तो महारानी जी कढ़ाई के पास बैठी हैं। अरे काकी, ऐसी पेट में आग लगे, पेट है या भार? कोठी में बैठी हुई क्या तुम्हारा दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक क्या तुमसे धैर्य ना हो सका? आकर छाती पे सवार हो गई, चल जाए ऐसी निगोड़ी जीप। दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। कौन देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती होगी, तब तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है, टाए ना मरे ना माछी छोड़े।
1: हाय बहू।
0: काकी, मैं कहती हूँ भला चाहती तो चली जाओ अपनी कोठरी में, वहीं जाकर बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए या ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा जरूर हो जाए। मैं कहती हूँ चलो अपनी कोठरी में, चलो।
1: नहीं, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। रूपा ने सच ही तो कहा था, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी रहा ना गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी।
3: जुर्मार कहा जा रहा है। हाँ, मेहमान, अब तक तो मेहमान भी आ गए होंगे। हाँ, पत्तल बिछ रही होगी ना, मेहमानों ने खाना भी शुरू कर दिया होगा।
4: कितना खाएंगे?

0: कितनी देर हो गई, अब तक तो मेहमान खा चुके होंगे ना। हाँ हाँ किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, शायद वो लोग खाकर चले भी गए होंगे, पर मुझे तो कोई बुलाने भी नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है ना, क्या जाने आज मुझे ना ही बुलाए, सोचती होगी आप ही आ जाएंगी। हाँ हाँ मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ, खुद ही चलूँ। अच्छा मैं खुद ही चलूँ, आज तो खूब चक्कर खाऊंगी, गरम गरम मुलायम मुलायम पूड़ियाँ, तरकारी, शक्कर, रायता, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है, कहाँ करें, जाने दो कहाँ करें, इतने दिनों बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। चलो
1: ने तो नाक में दम कर रखा है, किसने बुलाया था तुझे यहाँ, चल जा अपनी कोठरी में मर, निकल यहाँ से, चल यहाँ से।

0: काकी काकी काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ।
1: कौन
0: कौन?
1: लाडो बेटी, लाडो तू तू पूरियां लाई है? तू मेरे लिए पूरियां लाई है? मैं तो सोच रही थी रात कैसे कटेगी, क्या खाऊंगी, पेट की आग धधक रही है, किसी ने भी मेरी सुध न ली, मैं अंधी अपाहिज, ना कुछ सुनू ना कुछ बूझू। अगर आंगन में चली भी गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रही हैं, जाओ फिर आना। नहीं, लेकिन लेकिन उसने मुझे मारा, उसने मुझे घसीटा, उसने मुझे पटका।
0: काकी काकी खाओ ना।
1: खाती हूँ बेटा, खाती हूँ। तेरी अम्मा ने दी है ये पूरियां बेटा?
0: नहीं, ये मेरे हिस्से की है।
1: तूने तूने मेरी सिर्फ तली बेटा, तूने मेरी सुधरी। जीती रहे बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे।
0: काकी पेट भर गया?
1: नहीं बेटा, अब तो भूख और भी बढ़ गई है। जा अम्मा से थोड़ी और मांग लाना।
0: अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेगी।
1: फिर क्या करें, फिर अब क्या करें? हाँ, अच्छा लाडो, लाडो मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल, वहीं वहीं जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। हाँ वहीं जहां सबने खाना खाया था।
0: पर काकी,
1: अरे चल तो सही,
0: तू ले तो चल मुझे।
1: तू चलो।
0: यहीं बैठे थे सब। अरे अरे काकी काकी, ये क्या झूठी पतलू से?
1: चुप रह, मुझे खाने दे। ये कितनी सलोनी कचौरी, खस्ता। ये लड्डू कितने मीठे, और दही दही कितना स्वादिष्ट।
0: काकी
2: लाडली लाडली,
0: लो अम्मा आ गई, इधर ही आ रही हैं।
2: क्यों री, यहाँ क्या हो रहा है? अरे काकी,
1: हे राम,
2: ये क्या ब्राह्मणी होकर झूठी पत्थर चाट रहे हो? ऐसा अधर्म, इस अधर्म के पाप का भागी कौन है?
1: नहीं,
2: हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। काकी उठो। उठो काकी।
1: हाँ।
2: चलो अपने कोठरी में, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। उठो काकी। लाडली तू काकी को लेकर चल, मैं अभी थाली लेकर आती हूँ।
0: चलो काकी।
1: चलो बेटी।
2: लो काकी भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है काकी, उसका बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। खाओ ना काकी, खाओ ना। देखो देखो सब कुछ है थाली में, खाओ काकी।
1: भगवान की खाओ रखे बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे।
2: काकी
1: सुखी रखे।
3: अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतरकार थे हरीश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युवा से, आवाज़ें मधुश्री और एआर रहमान की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत एआर रहमान का।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ तुलसी कुमार की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म राजना से, आवाज़ें ए आर रहमान और कार्तिक की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजना जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लापता लेडीज से, आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल प्रशांत पांडे के और संगीत राम संपत का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप

0: लिए नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
2: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
4: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
6: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से, आवाज मरन भारद्वाज की थी। गीत के बोल और संगीत भी मरन भारद्वाज का ही था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शिमला मिर्च से। आवाज मीत ब्रदर्स अनजान और स्टेबिन बेन की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत मीत ब्रदर्स अनजान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, आवाज़ सनम पुरी की थी। गीत के बोल नीति मोहन के और संगीत विशाल इंदशेखर के।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म फिलौरी से। आवाज़ें रोमी और पवनी पांडे की थी। गीत के बोल अनविता दत्त के और संगीत शाश्वत सचदेव का।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और अदाएं कुछ ऐसी कि बिजलियां गिरा दें।

मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अश्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवों

का कारोबार था उनका। जिंदगी की राहों में आगे चलकर यूं हुआ कि मुमताज की माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए। ये तब की बात है जब मुमताज महज 16 साल की थीं। जाहिर है कि जिंदगी कठिन राहों पर चल पड़ी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और माँ फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करती रहीं। चूंकि घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए माँ ने सोचा कि क्यों ना बेटियां भी फिल्मों में काम करें और इस तरह से जिंदगी पटरी पर आ जाए। तो मुमताज की मां ने अपनी दोनों बेटियों यानी मुमताज और मलिका को फिल्मों में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 11 साल की छोटी उम्र में मुमताज ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में अपनी पारी शुरू की। पहली फिल्म थी सन 1958 में आई सोने की चिड़िया। इस फिल्म के हीरो थे तलत महमूद और हीरोइन थी नूतन।

और इस तरह से छोटे मोटे रोल उन्हें भी मिलते रहे और उनकी बहन को भी मिलते रहे। जब मुमताज थोड़ी बड़ी हुई तो 1960 के आसपास उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था स्त्री। इसके बाद आई वल्लाह क्या बात है और 1963 में आई सेहरा। ये वो दौर है जब मुमताज न बच्ची थी और ना बड़ी।

इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुमताज को बतौर सहायक अभिनेत्री काम मिला। ओपी रलहन एक फिल्म बना रहे थे, गहरा दाग। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो की बहन की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म चल निकली, जाहिर है कि मुमताज की एक खास पहचान बन गई। 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो, इसमें भी मुमताज की एक छोटी सी भूमिका थी। एक अभिनेत्री के तौर पर मुमताज अपनी मुकम्मल पहचान कायम करने की जद्दोजहद में लगी थी। दिल में कुछ बड़ा करने के ख्वाब थे, मौके सामने आ नहीं रहे थे, इसलिए जिस तरह की फिल्में आईं, मुमताज उन्हें मंजूर करती चली गईं। सन 1962 के आसपास की बात है। जाने माने पहलवान और हीरो दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। चूंकि दारा सिंह की फिल्में स्टंट फिल्में होती थी, बहुत सारी नामचीन हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। सबकी अपनी अपनी वजह थी, पर इन्हीं दिनों में मुमताज अपनी बहन मल्लिका के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर गईं। दारा सिंह ने मुमताज को देखा और उन्हें लगा कि मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन मिल गई है। मुमताज को भी एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी, तो बस यहां से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का एक दिलचस्प इतिहास। हीरो दारा सिंह, हीरोइन मुमताज।

मुमताज ने कुछ और सहायक भूमिकाएं की, जैसे फिल्म राम और श्याम में। ये फिल्म 1967 में आई थी। आदमी और इंसान 1969 में आई। इन दोनों फिल्मों के लिए मुमताज को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

यहां तक आते आते मुमताज की किस्मत पलटने वाली थी। हुआ यूं कि राज खोसला अपनी एक फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उन्हें अचानक नजर आई मुमताज। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म के लिए मुमताज को साइन कर लिया। ये फिल्म थी दो रास्ते।

तो रास्ते ने न केवल राजेश खन्ना को एक जोरदार पहचान दी बल्कि मुमताज भी बतौर नायिका छा गई लोगों के दिलों पर।

सन 1969 में दो रास्ते के अलावा एक और फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ मुमताज की। ये थी नरेंद्र बेदी की फिल्म बंधन। मुमताज का करियर अब चढ़ाव पर था। उनकी खूबसूरती, उनके अभिनय, उनकी अदाओं की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यानी जिंदगी में जद्दोजहद के दिन अब कम हो रहे थे और कामयाबी उनकी राहों को चूम रही थी। दो रास्ते के बाद मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी जोरदार तरीके से जम गई। एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने अब आपकी नजर। सन 1970, सच्चा झूठा।

0: सन 1971 दुश्मन
1: मैंने

फिल्में हिट हो रही थीं, बल्कि इनके गाने लोगों की जबान पर सज रहे थे। दिलचस्प ये था कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को लेकर फिल्में लिखी जा रही थीं, निर्देशकों की लाइन लगती थी इन्हें बतौर हीरो हीरोइन साइन करने के लिए। इसी दौरान मुमताज ने एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म की, 1970 में आई खिलौना।

ऐसा नहीं था कि मुमताज के हाथ ये कामयाबी एकदम अचानक आ गई हो। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया था। आपको बताएं कि एक दौर ऐसा था जब बहुत सारे नामी नायकों ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये लड़की तो बी ग्रेड की हीरोइन है। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताते हैं। 70 के दशक में शशि कपूर एक कामयाब अभिनेता थे। 1970 में फिल्म बन रही थी सच्चा झूठा, जिसमें बतौर नायक उन्हें साइन किया जा रहा था और बतौर नायिका मुमताज को, पर शशि कपूर ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और बाद में ये फिल्म आई राजेश खन्ना के हाथ। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी तो हिट हो ही रही थी, लेकिन आगे चलकर शशि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1974 में फिल्म चोर मचाए शोर में उन्होंने ये सिफारिश की कि उनकी हीरोइन के तौर पर मुमताज को साइन किया जाए, और यहां शशि कपूर और मुमताज एक साथ नजर आए।

मुमताज की खासियत ये है कि बहुत कामयाब, बहुत नामी और बहुत बड़ी हीरोइन बनने के बावजूद उन्होंने किसी नए हीरो के साथ काम करने से इनकार नहीं किया। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। 5 फुट 7 इंच का एक नौजवान फिल्मों में संघर्ष कर रहा था। उसकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। सन 1973 में मुमताज को ये कहा गया कि क्या आप इस अभिनेता के साथ काम करेंगी? मुमताज ने फौरन हाँ कह दिया। ये फिल्म थी बंधे हाथ और अभिनेता थे अमिताभ बच्चन।

उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देव आनंद के साथ उनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, और देव के साथ वो तेरे मेरे सपने में भी नजर आई।

मुमताज शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मचारी में काम कर रही थी। उन्हें बहुत शानदार तरीके से मॉडर्न डांस करना था और वो भी साड़ी पहनकर। पारंपरिक साड़ी से काम नहीं चल रहा था। उस जमाने की जानी मानी फैशन डिजाइनर भानु अथैया ने आइडिया लगाया और उन्होंने उस जमाने में पहली बार स्टिच साड़ी यानी सिली हुई साड़ी तैयार की। इसे पहनकर मुमताज ने इस गाने में नृत्य किया। न केवल मुमताज छा गई बल्कि मुमताज साड़ी भी छा गई। जी हाँ, स्टिच साड़ी आगे चलकर मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर हुई। एक कामयाब हीरोइन वो होती है जो अपने फैशन स्टेटमेंट्स जनता तक पहुंचाए। मुमताज ने ये बखूबी किया।

0: क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो।
1: फिरोज खान के साथ मुमताज नजर आई फिल्म मीला में, इसके बाद आई अपराध और फिर आई नागिन।

मुमताज के करियर का विश्लेषण करें तो उन्होंने तकरीबन 100 फिल्में तो की होंगी, जिनमें से 60 फिल्में हिट या सुपर हिट रहीं। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया, ये फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना।

मुमताज का करियर शिखर पर था, एक से बढ़कर एक रोल उन्हें ऑफर किए जा रहे थे। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि फिल्मों के ढेर लगे हुए थे। साल 1974 में एक दिन अचानक खबर आती है कि मुमताज ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली है और फिल्मों को अलविदा कह दिया है। यकीन मानिए, न जाने कितने दिल टूटे, न जाने कितने लोग उदास हो गए। एक हीरोइन का शादी करके घर बसाना उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत तो है, लेकिन जब लोग ये मानते हैं कि आगे फिल्में नहीं आएंगी तो उदास भी हो जाते हैं। लोगों को यूं लगा मानो कारोबारी मयूर वाधवानी ने उनकी प्रिय हीरोइन को उनसे चुरा लिया है, उनसे जुदा कर दिया है।

मुमताज शादी रचा के फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं, पर कुछ फिल्में थीं जो उनकी शादी के बाद आईं, जैसे प्रेम कहानी। सन 1977 में उनकी आखिरी फिल्म आई आईना। इसके बाद मुमताज बरसों बरस तक फिल्मी परिदृश्य से गायब रहीं। फिर 13 बरस बाद यानी 1990 में मुमताज नजर आईं पहलाज नेलानी की फिल्म आंधिया में। आपको बता दें कि मुमताज के परिवार में उनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान के साथ हुई है। साल 2022 में ये खबर आई कि मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। उन्होंने इस बीमारी को पूरे साहस के साथ पछाड़ा। आज मुमताज फिल्मी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपने चाहने वालों से मुखातिब होती हैं, जब वो पत्रकारों को इंटरव्यूज देती हैं या किसी टेलीविजन शो में नजर आती हैं। आज भी दर्शकों का मन उन्हें देखकर झूम उठता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री मुमताज पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति तेजश्री कामली। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी, चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी। तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं, और ये बरखा की रात यूं ही बहती रहे। दिल ने

मस्ती से बहती पवन झूम झूम के डोले, जब बरखा की हर बूंद तन में हलचल सी कर जाए। काली घटाएं बादल बन बरसे, जब बावरा ये मन झूम झूम के गाए।

सावन बहका है, बूंदों पर है खुमार, मनवा भी बहका है, बागों में मेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं, शायद सावन भी कुछ कहता है।

0: छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

तन सोना उगलती धरा, नए रंग के ये ऋतुएं मनमोहक आलम सी है छटा। चारों ओर छाई मदहोशी सावन की।

बहती हवा ने तेरी खुशबू बिखेर दी, रिमझिम फुहारों ने जब तेरे जुल्फों का साथ छोड़ा, भीगी रात में तेरा करीब रहना, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों में तेरी सांसों का घुल जाना।

बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, आज फिर भीग जाने को हम हैं बेकरार, तुझे पाने की चाहत में।

0: छाया गीत कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको

0: यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र। रात्रि के 11 बजे अब आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।